0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। यह हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए, लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं, ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।
2: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
5: इन समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवद गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जाने और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं. यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी. यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in. नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ. वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल. जी हाँ, आज स्टूडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड एक गेस्ट मेरे साथ जुड़ रही है. तो चलिए मैं उनका तारुफ आपको कराना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेता. मेरे साथ जुड़ रही है मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2017 का खिताब आपको मिला है और इम्प्रेस यूनिवर्स 2018 और उसके बाद 2019 में मिसेज यूनिवर्स का खिताब आपको मिला है. और आप पेशे से डॉक्टर चेतना अग्रवाल नाम है मैम का. और तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर.
1: कैसे हैं और कैसा फील कर रहे हैं स्टूडियो में आकर?
2: ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए. थैंक यू सो मच शारदा यूनिवर्सिटी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. बहुत अच्छा अनुभव रह रहा है ये और बहुत मजा आ रहा है. आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल.
1: मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहता हूँ, कैसी शुरुआत रही पेशे से? आप MBBS डॉक्टर हैं, एनेस्थियोलॉजिस्ट, करेक्ट बोला मैंने आई थिंक, और उसके बाद ये फील्ड, इन दोनों को किस तरीके से आपने बैलेंस करके रखा है?
2: देखिए, ताज हमने, हर लड़की का शौक होता है कि उसके सर पे एक ताज सजे
1: जी,
2: और मेरा भी ऐसा ही ख्वाब था. हम लोग जब भी टीवी पर मिस वर्ल्ड, मिसेस वर्ल्ड देखते थे, मिस यूनिवर्स, मिसेस यूनिवर्स देखते थे, तो अपना भी मन करता था कि कभी कभी ऐसा मौका मिले कि ये ताज हमारे सर पर भी चमके. तो यही एक ख्वाहिश थी, यही एक तमन्ना थी, लेकिन शुरू में ये नसीब नहीं हुआ. पर हाँ, जब मौका मिला तो मौका हमने हाथ से जाने नहीं दिया. और जैसे ही पहला मौका मिला 2017 में मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2017, जो कि उदयपुर में हुआ था, राजस्थान में, तो वहां पर मुझे मिसेस गुजरात का टाइटल मिला था एंड मिसेस इंटेलिजेंट का सब टाइटल मिला था
1: जी.
2: फिर बात करते हैं 2018 की, तो एम्प्रेस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया था. उसमें भी मैं सिटी एम्प्रेस, स्टेट एम्प्रेस रही थी, कंट्री फाइनलिस्ट रही थी और वुमेन ऑफ ऑनर अवार्ड भी मुझे मिला गया था गोवा में. और फिर 2019 में मिसेस यूनिवर्स, जो मिसेस कैटेगरी में सबसे ऊंचा
1: खिताब
2: है, बोलते हैं, वो हुआ था चाइना में, ग्वांगजू में
1: जी.
2: तो वहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया था एज मिसेस यूनिवर्स मिडिल एशिया 2019 और वहाँ पे मिसेस काइंडनेस का सबटाइटल भी मिला था.
1: ग्रेट ग्रेट. घर से कितना आपको सपोर्ट मिला?
2: घर से पूरा सपोर्ट मिला है इसमें.
1: अच्छा, तो ये जो शुरुआत रही है, यूँ कहें कि बचपन से आपके दिल दिमाग में रहा है कि मुझे भी इस फील्ड में आना है, कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है.
2: फैशन शोज में पार्टिसिपेट किया है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर था.
1: ओके ग्रेट ग्रेट, चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद जो बातों का सिलसिला है लिस्टनर्स लगातार जारी है, आप कहीं जाएगा मत। मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड डॉक्टर चेतना अग्रवाल जुड़ी हुई हैं, जो कि इनके बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अभी और भी कुछ खास आना बाकी है, आप कहीं जाएगा मत। स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 FM, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर चेतना अग्रवाल हैं, साथ ही साथ कई खिताब इनके नाम है, जैसे कि 2017 में मिसेस इंडिया यूनिवर्स का खिताब आपके नाम है, 2018 में एम्प्रेस यूनिवर्स का खिताब आपके नाम है और वहीं 2019 में मिसेस यूनिवर्स का खिताब भी आपके सर है, सर माथे है। ये जो ख्वाब आपने देखा बचपन का ही ख्वाब था या जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपका ख्वाब परवान चढ़ता गया?
1: बचपन से ही ख्वाहिश थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे बढ़ती गई ये ख्वाहिश। पर मिस कैटेगरी में कभी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला, तो मिसेस कैटेगरी में मैंने अपना ये सपना सच किया।
0: ओ ग्रेट ग्रेट, उसके पीछे कितनी मेहनत रही होगी डॉक्टर?
1: मेहनत इसमें काफी रहती है। लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं स्टेज पे आके बस हम ताज जीत लेते हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें हमारी पूरी ग्रूमिंग होती है, हमारी पूरी ट्रेनिंग होती है, हमको हमारे बात करने का तरीका सीखना पड़ता है, हम कैसे वॉक करते हैं, हमारी रैंप वॉक ट्रेनिंग होती है, क्वेश्चन आंसर राउंड्स की ट्रेनिंग होती है, हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं सबके सामने उसकी भी ट्रेनिंग होती है, तो काफी ट्रेनिंग रहती है। फिर हमारा टैलेंट राउंड होता है, उसके लिए हम तैयारी करते हैं, चाहे हमको डांस करना है या कोई भी हमको प्रेजेंट करना हो तो उसके लिए भी तैयारी होती है। तो काफी इसमें
0: मेहनत है,
1: बहुत मेहनत लगती है। और हमको एक प्रेजेंटेशन भी करना होता है, जैसे मिसेस यूनिवर्स 2019 में डोमेस्टिक वायलेंस पे हमने एक प्रेजेंटेशन किया था, जिसमें मैंने डिजिटल आर्ट पेंटिंग्स के जरिए अपना पूरा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया था डोमेस्टिक वायलेंस पे। तो इसमें काफी हमको तैयारी करनी पड़ती है।
0: जी जी जी, ये जो तैयारी है ये तैयारी कौन कराता है? आपको खुद से ही तैयारी करनी पड़ती है या आप जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ की टीम आपको तैयार करती है?
1: कंपटीशन की टीम भी हमको तैयार करती है। जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस लिए जाते हैं हमारे वहाँ पे। पर कॉम्पिटिशन में जाने से पहले, पेजेंट में जाने से पहले हमको खुद की तैयारी करनी पड़ती है टू बी प्रेजेंट प्रेजेंटेबल इन दी कॉम्पिटिशन।
0: ग्रेट, मैं सॉरी सॉरी प्लीज कंटिन्यू करिए।
1: तो हमारे जो भी हम ट्रेनर्स यहाँ पे लेते हैं, ग्रूमर्स होते हैं हमारे, तो उनसे हम ट्रेनिंग लेते हैं, प्लस अगर जो हमारे टैलेंट राउंड का जैसे मैंने बात की थी तो उसके लिए भी हम तैयारी करके ही जाते हैं यहाँ से।
0: ओह ग्रेट,
1: प्लस हमारे डिजाइनर्स होते हैं जो हमारे ड्रेसेस डिजाइन करते हैं।
0: ओके, डॉक्टर जहन में ये भी सवाल आता है कि मैं समझता हूँ कि कोई एक ऐसे इलाके से आ रहा या आ रही है, अपने सपने को साकार करना चाहता है या चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल दिमाग में एक ये बात भी आ जाती है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। एक बात होती ही होती है, तो इस मामले में या यूं कहें कि खुलकर आप बताएं कि वो अपने सपने को कैसे साकार कर सकता है, वो कैसे आपकी तरह कोई मिस इंडिया बन सकता है या मिस इंडिया का जो खिताब है उसके सर माथे जा सकता है।
1: ये अच्छी बात है। एक्चुअली आजकल के जो पेजेंट्स हैं वो बहुत ओपन अप हो गए हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बात कर सके तो आपको खिताब मिलेगा। आप अपनी लैंग्वेज, मातृभाषा जो भी है आपकी, उसमें आप अपने क्वेश्चन आंसर राउंड दे सकते हैं। वो आपके सब जवाबों को एक्सेप्ट करेंगे। और ट्रांसलेटर्स भी होते हैं जो आपकी भाषा को इंग्लिश में या हिंदी में जो ज्यूरी समझ सके उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें बोल सकते हैं। और दूसरा है कि ट्रेनिंग तो हम सबको लेके ही जानी पड़ती है।
0: जी जी,
1: और वहाँ पे भी वो हमको ट्रेनिंग बहुत अच्छे से देते हैं।
0: क्या कोई रुपए पैसे की अगर हम बात करें तो क्या कोई रुपया पैसा भी आगे चल के खर्च करना पड़ता है?
1: हाँ जी, इसमें रुपया पैसा तो खर्च करना पड़ता है, क्योंकि आपकी ड्रेसेस होती हैं, आपके जो ट्रेनर्स होते हैं, आप जब पेजेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपका पूरा ग्रूमिंग सेशन होते हैं, तो हमको पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं। कुछ लोगों को स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है फिर लकी, पर हाँ इसमें थोड़ा खर्चा तो रहता ही है। आपकी तैयारी होनी चाहिए।
0: क्या बात है, यानी कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिए, अपने आप को बेहतर बनाकर रखिए, चाहे वो वॉकिंग की बात हो, टॉकिंग की बात हो, और जिस तरीके से डॉक्टर चेतना अग्रवाल हमें बता रही हैं कि इन इन बारीकियों को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे खास बात यह कि इन्होंने एक सपना देखा और सपने को इन्होंने साकार किया। अब वो चाहे वो मिसेज यूनिवर्स का खिताब क्यों ना हो, लेकिन वो खिताब बचपन से दिल दिमाग में कहीं घूम रहा था कि ये सपने को मुझे साकार करना है। कहते ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा, कोशिश करते जाइए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती। डॉक्टर चेतना अग्रवाल, आप पेशे से एनेस्थियोलॉजिस्ट, जिसे हम कहते हैं कि बेहोश करने वाली डॉक्टर है। आप इतनी खूबसूरत हैं कि अभी भी हम बेहोश हो ही रहे बिना इंजेक्शन के दवा के। तो इसके बारे में मैं आपसे जानूंगा जरूर, मगर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जो आप गाना चाहती हूँ, गुनगुनाना चाहती हूँ, हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहती हूँ?
1: ए दिल है मुश्किल।
0: क्या बात है. सो ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ब्यूटीफुल लिसनर्स, सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर. गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ.

0: कभी आपने सुना सिर्फ और सिर्फ सुनोशादा 90.8 FM पर। मैं हूं गगन आपके साथ और मेरे साथ बड़ी ही खूबसूरत डॉक्टर जुड़ी हुई है और क्या कहूं मैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर आपसे बात हो रही थी कि आप बेहोशी की डॉक्टर हैं। आपको देख के तो मुझे लगता है कि मरीज वैसे ही बेहोश हो जाते होंगे। ये मेरी तरफ से आपको एक कॉम्प्लीमेंट है।
1: थैंक यू।
0: ये जो डॉक्टरी का फील्ड है आपका और आप इस फील्ड में भी काम कर ही रहे हैं, तो ये जो बैलेंस है किस तरीके से आप इसका तालमेल बैठा पाते हैं?
1: बैलेंस करना, यस इट इज थोड़ा मुश्किल चीज होती है हमारे लिए, लेकिन जब दिल में एक ख्वाब होता है, कुछ पाने की तमन्ना होती है, तो अपने आप हम आपस में टाइम सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको परिवार को भी देखना होता है, हमको बच्चों को भी देखना होता है, प्रोफेशन को भी देखना होता है और अपने ख्वाबों को भी सच करना होता है।
0: एक्सीलेंट।
1: तो सब कहीं ना कहीं जैसे भी होता है हम टाइम सेट करके सब मैनेज करते रहते हैं।
0: वेरी गुड। यानी कि कहीं ना कहीं लिसनर्स, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो राहें वो खुद ब खुद बनती चली जाती हैं। बस एक बार छोटा सा कोशिश करिए, प्रयास करिए और जो आप चाह रहे हैं वो होता चला जाएगा। आप कई सारे कॉम्पिटिशन में आपने फाइट भी किया, जैसे कि आप उसके
1: आपने जो ये बोला उसके बारे में मैं बोल रही
0: हूं। प्लीज।
1: मेरा एक मोटो जो हम बोलते हैं वो ये है, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ न्यू। यानी जब आपको मिले मौका तो आप उसी समय अपनी मंजिल के रास्ते पर चल सकते हैं।
0: क्या बात है। इस बात को यूं कह सकते हैं कि जब भी मिले मौका मार दो चौका। बहुत खूब। और आम भाषा में डॉक्टर कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। ये जरूरी कि ख्वाबों को जिंदा रखना जरूरी है, उनको मरने मत दीजिए। आप एक जीता जागता उदाहरण है समाज के लिए, युवाओं के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी आप कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर मंजिल आपको मिल ही जाएगी। कई सारे कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, उसके आप विनर भी रही हैं। एज ए जूरी जब आप जाती हैं तो क्या क्या खूबी आप जो पार्टिसिपेंट वहां पर हैं क्या देखती हैं?
1: ज्यूरी बनके भी जाने का मौका मुझे मिला है कई पैजेंट्स में, तो वहाँ पे हम सबको बेसिकली उनकी पर्सनालिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं राधर देन की फिजिकल ब्यूटी या कैसे वो बोल कैसे रहे हैं। ओवरऑल पर्सनालिटी पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो कैसे बात करते हैं, वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उनका वॉकिंग स्टाइल कैसा है, उनका टैलेंट राउंड कैसा है, उन्होंने इंटरव्यू कैसा दिया है, ओवरऑल ट्रेनिंग प्रोसेस में वो कैसे रहे हमारे साथ, कितना अच्छा उन्होंने सहकार दिया, कितना अच्छा ट्रेन किया अपने आप को। तो सब कुछ हम इकट्ठा देख के ही हम पार्टिसिपेंट्स को जज करते हैं।
0: वेरी गुड। मुझे लगता है कि इस बात से जो हमारे लिसनर हैं, इन बातों को सुनना या समझना उनके लिए बहुत जरूरी है। फाइनली एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जिस पर्पस से आप यहाँ आई हुई हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इस कैंपस के बारे में क्या कहना चाहेंगे और फाइनली एक मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे यूथ को?
1: मैं ला ग्लोबल फाउंडेशन की ऑनर्ड एम्बेसडर रही हूँ 2020 से, जब ये कोविड हुआ था, शुरू हुआ था उसके जस्ट पहले ही मैं इनकी ऑनर्ड एम्बेसडर बनी हूँ। और मुझे कहकर बेहद खुशी हो रही है कि जो मतलब कोविड टाइम्स में भी जब हम सोचते थे कुछ नहीं हो सकता है, तब भी ला ग्लोबल फाउंडेशन ने इतनी सारी ऑनलाइन मीटिंग्स की हैं, इंटरनेशनल मीटिंग्स की हैं, जो यूएन के रिलेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेशन में होती हैं एंड काफी आगे तक इस फाउंडेशन को लेके गए हैं और इंटरनेशनल स्पीकर्स उनके पास आए हैं जिसके साथ में हम मीटिंग करते थे ऑनलाइन और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये थ्रू आउट। और उनके साथ हमने ब्रेस्ट अवेयरनेस का यहाँ पे एक पेजेंट किया था, क्राउन ग्लोबल पेजेंट अवार्ड्स किए थे अभी दिल्ली में, तो उसमें भी एज अ ग्रूमर मैं आई थी, एज रैंप वॉक कोरियोग्राफर भी आई थी। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, सफर रहा है उनके साथ। और मैं इंडियन रिसोसिटेशन काउंसिल की जो ISA हमारी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और हमारे मैं अपनी सिटी की सेक्रेटरी हूँ ISA वर्धा। और हमारे जो नेशनल फोरम्स हैं ISA आर्ट एंड लिटरेचर क्लब, ISA कल्चरल क्लब एंड ISA विजिल, उसकी भी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ।
0: ग्रेट। एक छोटा सा संदेश हमारे यूथ के लिए, हमारे उन गर्ल्स के लिए जो आपकी तरह इस खिताब को जीतना चाहती हैं, मिस यूनिवर्स का, मिसेज यूनिवर्स का या मिस इंडिया का?
1: जी हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ अपने ख्वाबों को हमेशा जिंदा रखिए, चाहे जिंदगी आपको किसी भी मोड़ पे लेके जाए, कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, लेकिन अपने ख्वाबों को प्लीज बुझने मत दें, उनको हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि कब आपको मौका मिलेगा उन ख्वाबों को सच करने का ये आपको नहीं पता, हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन ख्वाब सच जरूर होते हैं, मैंने खुद ने देखे हैं, इसलिए आप भी देखेंगे जरूर जिंदगी में कभी ना कभी, डेफिनेटली।
0: चलिए, मैं भी ख्वाब देखता रहता हूँ और इंशाल्लाह आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि मेरे भी जो ख्वाब है, जो सपना है, वो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन जरूर साकार होगा। सो डॉक्टर चेतना अग्रवाल, आपसे बात करके, आपसे मिलकर मुझे वाकई बेहद खुशी हुई, बहुत एनर्जी मिली है, और जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने भी एक ख्वाब देखा है कि वो सपना जरूर साकार होगा, आपकी बातों से मुझे भी अपने आप में ऐसे लगने लगा है। सो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें बहुत सारा समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई, इस बात के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: धन्यवाद आपका भी। एंड शारदा यूनिवर्सिटी के लिए मैं कहूंगी कि मैंने बहुत पहले से मैं टीवी और न्यूज़पेपर में इनके एड्स देखती थी, और आज पहली बार जिंदगी में मौका मिला है इस यूनिवर्सिटी में आने का, और इतना बड़ा यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सब बहुत सपोर्टिव है, ओवरऑल टीम सपोर्ट बहुत ही अच्छा है।
0: अच्छा एक्सपीरियंस रहा अच्छा। मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका?
1: बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है।
0: ग्रेट ग्रेट, नाइस नाइस,
1: इतना कंफर्टेबल फील करके करने के लिए। थैंक यू सो मच।
0: ये बात आपने बहुत अच्छी कही, ये होना बहुत जरूरी ताकि हम जो बातें हैं वो खुलकर बात कर पाए।
1: बिल्कुल।
0: और आप जब जज होते हैं तो मैं समझता हूँ जो प्रतिभागी आपके सामने, अगर वो माहौल क्रिएट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक नया बंदा या बंदी है वो डर जाएगा, घबरा जाएगा।
1: बिल्कुल भी।
0: तो डॉक्टर आपसे बात करके वाकई बेहद खुशी हुई, मेरी तरफ से आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच।
0: सुनते रहिए। थैंक यू मैम। ये प्रोग्राम कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताइएगा जरूर। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ गुजारते चले जाइए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। एक्शन।

0: जो कहते हैं सच ये भी कहते हैं कि जान है तो जहान है ना। और जब जान की बात आती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और जब हेल्थ का जिक्र होता है तो सच बात ये भी है कि कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर की याद आती है कि डॉक्टर हमसे जुड़ेंगे, डॉक्टर हमें गाइड करेंगे कि हम क्या करें और क्या ना करें। निश्चित तौर पर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि हेल्थ के संबंध में किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और जब आपको पता चले कि डॉक्टर वाकई बहुत इंटेलिजेंट हैं, खूबसूरत हैं, और साइड बाय साइड वो अपना एक जो प्रोफेशन है उसको भी कैरी कर रहे हैं, चाहे वो मॉडलिंग की बात हो या लो ग्लोबल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर जो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, यूं कह सकते हैं कि एक संपूर्ण पैकेज है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्राची वी रायजादा। सो डॉक्टर प्राची, आपका सुरुशाधा 90.8 एफएम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: अभी दो और लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत रही, बहुत अच्छी रही। आपके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इस फाउंडेशन के, बहुत खुश मिजाज लोग हैं आप, और आपके चेहरे पर मुस्कान है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो ये जो मुस्कान का राज क्या है, किस तरीके से लोग आपसे जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और चूंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, और किस तरीके से उसका जो दर्द है एक मरीज का वो फुर हो जाता है, दूर हो जाता है।
1: सर ये तो अभी तो मुझे लगता है हम अंदर से इतना ज्यादा खुश हैं, हेल्दी हैं और ब्लेस्ड हैं, इसीलिए हर समय हम खुश रहते हैं बेसिकली।
0: okay.
1: और हर मोमेंट को जीते हैं।
0: रियली नाइस। तो आपकी जो पैदाइश है वो कहाँ से है, और किस तरीके से आपने अपने आप को इस फील्ड के लिए तैयार किया है, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप यहाँ आई हैं शारदा यूनिवर्सिटी में कैंपस में?
1: सर बेसिकली नेटिव मेरा है वाराणसी, बट क्योंकि मेरे डैड गवर्नमेंट जॉब में थे तो मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप पंजाब में हुआ है
0: जी।
1: स्कूलिंग, एजुकेशन एक्सपीरियंस, एवरीथिंग सब वहीं से होने के बाद यहाँ शादी हुई मेरी, तो मैं इधर आ गई। उसके बाद मैं अपने बेसिकली मेरा प्रोफेशन एचआर प्रोफेशन से हूँ मैं सिंस लास्ट 15 इयर्स, और इसके अलावा यहाँ आने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि मेरे को लगता था जब तक फिट नहीं रहेंगे, क्योंकि बेसिकली मैंने जो चीज अपने कॉर्पोरेट में नोटिस किया है वो ये है कि इतना प्रेशर है प्राइवेट जॉब्स में, इतना प्रेशर है, किसी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक रख सके। अगर हम इसको बैलेंस करके चलते हैं तो जो स्माइल की बात आप कर रहे हैं वो आराम से हो सकती है। सो मैंने उसके लिए टाइम निकाला। मैं मॉर्निंग 4 o'clock उठती हूँ डेली, मेडिटेशन
0: करती हूँ। कुमार को फॉलो करती है आप। ग्रेट, गुड जॉब डॉक्टर जी।
1: और मेडिटेशन करती हूँ डेली।
0: एक्सीलेंट।
1: और उसके बाद मैं रनिंग और साइकिलिंग के लिए अपने टाइम निकालती हूँ।
0: अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि आपने सुबह की बात बता दी कि पांव फटने से पहले आप जग जाते हैं, लेकिन आप सोते कितने बजे?
1: सर मैं 9:30 अपने बेड पे चली जाती। जी जी जी। और मैंने अपनी बेटी को भी इतना ही डिसिप्लिन रखा है। लोग कहते हैं बच्चों के साथ हम सो नहीं पाते, वो जागते रहते हैं, बट नहीं, शी इज वेरी डिसिप्लिन, वो भी हमारे साथ सो जाती है।
0: माँ पर गई है।
1: सर अगर ऐसा नहीं करें तो मॉर्निंग 4 o'clock नहीं
0: हो पाता। डॉक्टर मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आपने जो हमारे बड़े बुजुर्गों का सिद्धांत रहा है कि समय से सोना समय से उठना, यही वजह है कि उनकी हेल्थ बड़ी अच्छी रहती थी। मैंने खुद से ऑब्जर्वेशन जो मेरा है वो ये है कि अगर आप नींद खो रहे हैं तो जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून आप खो रहे हैं। तो उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आपने तो अपने आप को बैलेंस किया है कि 9 बजे आप सो जाते हैं और 4 बजे खटिया छोड़ देते हैं। खटिया नहीं होगा, सॉरी, बैग छोड़ देते हैं आप तो।
1: जी हाँ।
0: तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग लेट आवर्स में सोते हैं या जल्दी जग जाते हैं, नींद कम लेते हैं?
1: सर ये करने का रीजन ही एक है, क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा कि कॉर्पोरेट में मैं देख रही हूँ इतना प्रेशर है, लोगों से नहीं हो पाता है। एक टाइम था मैंने भी ये सारी चीजें फॉलो करनी शुरू कर दी थी कि 1-1 बजे तक हम ऑफिस का काम लेके रात को बैठे हैं, मॉर्निंग में नहीं हो पाता था। बट मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले अपनी फिजिकल फिटनेस पे अगर हम फोकस्ड हैं, हमारा मेंटल लेवल स्टेबल है, तो हम सब चीजें कर सकते हैं। रात को ये जागना और स्पेसिफिक मोबाइल के साथ, ये सब चीजों से अगर वो दूर रहेंगे और अपनी खुशी और हेल्थ दोनों मेंटेन कर सकते हैं अच्छे से, तो ये करना चाहिए एक बार वो प्रैक्टिस करके। क्योंकि हमारे पास इंटर्न्स आते हैं, उनको भी बोलते हैं कि अगर आप लोग हमें ऑनलाइन दिखते हैं इतने बजे के बाद तो आपको वो पनिशमेंट मिलेगी नेक्स्ट डे, तो हम उनको भी कोशिश करते हैं कि वो मोटिवेटेड रहे उस फील्ड में।
0: यानी कि आपकी खूबसूरती का जो राज है वो टाइम से सोना, टाइम से खाना, अपने आप को बैलेंस डाइट जो आप लेते हैं, जिसकी वजह से आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा है। क्या कहना चाहते हैं जो जो नींद कम लेते हैं, जो दिक्कत परेशानी में घिरे हुए हैं, जो अवसाद से ग्रसित है, किस तरीके से वो अपने आप को मेंटेन कर कर रखें, किस तरीके से जिंदगी को वो खुशनुमा बना कर रखें, एक छोटा सा संदेश आपकी तरफ से उनके लिए।
1: सर मुझे यही लगता है कि उनको जितना वो परेशान है, परेशानियों के बारे में सोच सोच के नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। एटलीस्ट उनको 21 डेज, एक सिंपल ट्रिक जो मैं फॉलो करती हूँ, अगर मैं बहुत कभी परेशान होती हूँ, मैं सारी नेगेटिव थॉट्स राइट करती हूँ एक नोटबुक पे, फिर उसको फाड़ देती हूँ और बर्न कर देती हूँ बस, और उसको डस्टबिन में ले जाकर फेंक देती हूँ। और आपको भी आप फील करेंगे कि आप लाइट फील कर रहे हैं। मेडिटेशन का रोल तो एक अलग होता ही, आप पॉजिटिव रहते हैं, बट ये करने से नेगेटिविटी जो उस टाइम पे जो आपको खाए जा रही है, वो आपकी थॉट निकल गई आपके माइंड से, तो आप नेक्स्ट पल कुछ और अच्छा जो आपको अच्छा लगता है वो करके देखिए। गाना गाना है, डांस करना है, कुछ भी कर सकते हैं।
0: डॉक्टर प्राची, जब गाने का जिक्र हो ही गया तो बातों बातों में कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के आसपास रहता हो, जब आपको लगता है कि मैं स्ट्रेस से गुजर रही हूँ, ये गाना गाना चाहती हूँ, गुनगुनाना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं अपने लिसनर्स को भी सुनाना चाहती हूँ।
1: सर स्ट्रेस तो टच वुड नहीं है मेरी लाइफ में, बट फिर भी अगर कभी अगर किसी को परेशानी है तो सिर्फ दो लाइन्स
0: जी प्लीज।
1: ये मत कहो खुदा से

0: शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: आई होप
0: जब भी आपसे मुलाकात होगी, इधर कैंपस में आना होगा, तो जरूर आप हमारे रेडियो आएगा, जरूर हम आपसे फिर बात करेंगे।
1: थैंक यू सो मच सर इतनी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू।
0: लिसनर्स, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार से मोहब्बत से गुजारते चले जाइए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। टाटा बाय एंड टेक केयर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: और डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
1: आए पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
0: वो
1: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
2: क्या क्या हो बेटिया?
3: डॉक्टर साहब
4: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है।
5: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
1: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
3: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
4: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
6: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।

0: पाँच से नौ साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:41 हो चुके हैं। हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने इशारा किया था कि ब्रेक के इस पार आएंगे तो हम कुछ डिटेल में बातें करेंगे। दिल्ली NCR का जो मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली NCR में मौसम खुशनुमा हो चुका है, रिमझिम रुझिम बारिश हो रही है और जिसकी वजह से दिक्कतें परेशानियां भी हमारे सामने बहुत ज्यादा आ रही है। उत्तर प्रदेश में आप हैं हमें तो उत्तर प्रदेश की अपडेट भी देना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के हालात तो यूं हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश है।

है, बारिश अच्छी है और कहीं कहीं अलर्ट भी घोषित किया गया है। तो ऐसे समय में बारिश के दौरान क्या करें क्या ना करें, ये जानना समझना भी बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट कहते हैं कि कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं, जैसे कि बारिश के दौरान खुले मैदान, पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से आपको बचना होगा ताकि जन धन हानि न हो। गरज चमक के साथ जो बिजली गरजती है बरसती है तो सुरक्षित स्थान पर आप रहें, और जल भराव वाले रास्तों पर वाहन सावधानी से आप चलाएं, और मौसम खराब होने पर अनावश्यक यात्रा से आप बचें। सच बात तो यह कि ऐसे समय में कहीं ट्रैवल मत करिएगा। किसानों को भी खेतों में काम करने से पहले जो मौसम अपडेट है जैसे कि हम आपको देते रहते हैं उस पर नजर रखने की सलाह दी गई, और अगस्त की शुरुआत के साथ मॉनसून ने फिर रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है, और ऐसे में जिन जिलों में आज तेज बारिश की संभावना है वहां लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होगी, और वहां लंबे समय से बारिश का इंतजार जो लोग कर रहे थे उस इलाके में खुशी की लहर दौड़ती हुई नजर आ रही है कि बारिश की संभावना जताई जा रही है, बताई जा रही है। और फिलहाल मौसम विभाग का अनुमान यह है कि आने वाले दिनों में भी बादल की आवाजाही बनी रहेगी और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। साथ ही साथ ट्रैफिक की स्थिति यह है कि कालिंदी कुंज, क्योंकि हम वहां से हर रोज आते हैं तो ट्रैफिक की स्थिति यह है कि कांवड़ यात्रा की वजह से एक लेन को बंद कर दिया गया जो कि कालिंदी कुंज से सेक्टर 37 की तरफ आती है, वो वाली लेन बंद कर दी गई कांवड़ियों के लिए ताकि कोई दिक्कत परेशानी उनको न हो। और जाम की स्थिति यह कि आप समझ लीजिए कि सुबह और शाम कालिंदी कुंज को क्रॉस करने में लगभग आधा घंटा लग रहा है, और फिर अब जब आप नॉलेज पार्क में आते हैं अमेठी का पीछे का जो गेट है एंट्रेंस गेट है वहां पर भी 10 से 15 मिनट आपके खराब हो सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। क्या है खास जानेंगे जरूर मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सोर्स 90.8 FM विद मी मेरी रनिंग गगन के साथ कैलाश खेर की आवाज सही है।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
1: Beautiful songs, Inqilabi Ziddi from the movie Gandhi Talks. और इसको धुन से सजाया है A.R. रहमान, vocals श्रेया घोषाल, lyrics कुमार। All new Suno Sharda 90.8 FM, Inqilabi Ziddi.

दी ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ मैं ले रहा हूं अनुमति, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लिसनिंग टू शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। इंकलाबी जिद्दी जिद्दी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार बहनों भाइयों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। हम लेकर हाजिर हैं आपका प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कही, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में हैं
3: वैष्णवी
2: और साथी हैं हमारे अपने सेहतिया भैया, एक ऐसे व्यक्ति जो हमें बार बार अपने अनुभवों और समझदारी से नई दिशा दिखाते हैं। भैया सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने तो इस 100 दिन के टीबी अभियान में कमाल कर दिखाया, इसीलिए आपको कलेक्टर साहब से पुरस्कार भी मिला।
3: भैया हमारे सभी श्रोताओं की ओर से आपको मुबारक, आपने दिन रात मेहनत करके लोगों को टीबी के बारे में जागरूक किया, हजारों लोगों के टेस्ट करवाए, इलाज का सिलसिला शुरू किया और निश्चय मित्र बनवाए, मतलब कि हमारे जिले को टीबी मुक्त कराने की ओर ले जाने में आपकी भूमिका सराहनीय रही है।
4: हाँ तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारा ही सिर्फ इसमें भूमिका नहीं है, इसमें आपका जो सामुदायिक रेडियो है, आपका सब श्रोता सब बात को सुना, उन लोग का भी हम भूमिका है। लेकिन अब एक बात है, सब लोग जान गया है कि जो टीबी है इसका इलाज हो सकता है, तो सही समय पर टेस्ट करवाइए, सही समय से दवाई लीजिए और सही मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन करिए, तो टीबी हो जाएगा रफू चक्कर।
2: सिहतिया भैया ये तो सब आप बातें बहुत अच्छी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अवार्ड तो हमारी भाभी टीकन देवी को भी मिला है, वो भी तो आने वाली थी ना, क्या हुआ? हम तो श्रोताओं की तरफ से उन्हें भी बधाई देना चाहते थे, आपको मालूम है अवार्ड आपको मिले और श्रोता हमें मुबारकबाद दे रहे हैं।
3: वैसे भाभी है कहाँ?
4: क्या बताएं, हम दोनों प्रोग्राम के लिए स्टूडियो आ रहे थे तो रास्ता में देखी कमला का जो पति है सुरेश पाउडर वाला दूध लेकर घर जा रहा था। अब टीकन देवी देखी तो उससे तो रुका नहीं गया, तुरंत पूछी कि पाउडर वाला दूध काहे ले जा रहा है। तो ये कमला की बेटी है, अभी 4-5 दिन की है, तो सुरेश कहने लगा कि अम्मा भेजी है, तो बच्ची का पेट नहीं भरता है इसलिए रात में रोती है, तो फिर तो टीकन देवी को कौन रोक सकता है। तो तुरंत सुरेश के दुकान में जाकर पाउडर का दूध वापस कराई, जल्दी उसके घर, तभी वहीं पर उपदेश ज्ञान दे रही होगी।
2: सिहतिया भैया ये तो हमारी भाभी टीकन ने बहुत सही किया, एक बार अच्छे से समझा देंगी तो सुरेश क्या, सुरेश की अम्मा पापा दोनों समझ जाएंगे, आखिर टीकन भाभी से कौन बहस कर सकता है।
3: मुझे मालूम है कि सिर्फ 6 महीने तक ही माँ का दूध बच्चे के लिए भरपूर आहार होता है, लेकिन क्या ऐसी स्थिति में बच्चा रो रहा है, भूखा है, पेट नहीं भर पा रहा है, तो उसे ऊपर का दूध का फॉर्मूला दे सकते हैं?
4: देखिए एक गलत बात है, तो पहला बात तो ये कि बच्चा का पेट भरा रहे उसके लिए माँ के साथ साथ परिवार के सब सदस्य को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, मेहनत तो कोई करता नहीं है। तो इस विषय पर और चर्चा करें उसलिए आपका सब श्रोता कुछ बात बताना चाहेंगे तो आप इजाजत दीजिएगा, लेकिन तब बताएंगे।
2: कैसी बातें कर रहे हैं सिहतिया भैया, नेकी और पूछ इजाजत, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, बिल्कुल ये माइक तो आपका है, लीजिए।
4: हाँ तो धन्यवाद, लेकिन अब तो ज्ञान का भंडार क्या है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमको जानकारी है तो उसमें से हम बता देते हैं तो सब आदमी सुनिए। पहला बात जो जरूरी है कि माँ का दूध जो है वो नवजात बच्चा के लिए काहे जरूरी है, तो पहला घंटा से ही स्तनपान को शुरू करवा देना है, एकदम पहला घंटा 60 मिनट के भीतर। तो इससे क्या है कि मृत्यु दर जो है 20% तक हो जाएगा कम, और उसके बाद जीवन के पहला 6 महीना केवल स्तनपान केवल, तो उससे क्या होगा कि डायरिया से मृत्यु का जोखिम जो है वो 11 गुना कम हो जाएगा और निमोनिया से मृत्यु की संभावना 15 गुना कम हो जाएगी। शिशु को माँ का दूध न मिलना 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के मृत्यु के प्रमुख कारण में से एक है।
3: सही कहा आपने, मैं भी आज के एपिसोड के लिए तैयारी कर रही थी और मैंने भी सरकार की एक रिपोर्ट में पढ़ा कि आज भी लगभग 50% महिलाएं पूरे 6 महीने स्तनपान नहीं करवाती हैं, जबकि स्तनपान से नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी पर प्रभाव के बारे में ठोस प्रमाण देखने को मिलते हैं। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए पहले घंटे से लेकर 6 महीने तक इष्टतम स्तनपान और फिर 2 साल तक निरंतर स्तनपान मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है।
4: बिल्कुल सही पढ़े हैं आप। इसमें स्तनपान जो नवजात बच्चे के लिए सबसे अच्छा है, सुरक्षित है, पोषण देता है, अम्मा का दूध साफ होता है, सुरक्षित होता है, इसमें ऐसा तत्व सब है जो आम बीमारी सबसे बचा लेता है।
3: क्या आप उन बीमारियों के बारे में भी हमें बता सकते हैं?
4: थोड़ा बहुत तो हमको जानकारी है ही, उतना हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जो माँ का दूध है वो जो है इम्यूनिटी बढ़ाता है, माने बीमारी से लड़ने का क्षमता बढ़ाता है। अब जैसे कि देखिए दस्त है, निमोनिया है, कान में इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, पेशाब का बीमारी हो गया, ये 100% इससे बचा लेगा, 100%। बाकी जो आजकल बीमारी फैला हुआ है देखबे करते होंगे, उसमें मोटापा है, शुगर है, दिल का बीमारी है, कुछ कैंसर है, तो इससे भी बचाव करवा सकता है। एक और बात है कि माँ का दूध पीने वाला बच्चा जो है वो ज्यादा बुद्धिमान होता है, तो आप समझिए रहे होंगे।
5: पानी दीजिए थोड़ा।
6: हाँ आप लोग ठीक है। 50।
7: कितने साल की है?
8: इसका टिकट 2 महीने की तो है।
7: आपको किसी ने बताया नहीं? जन्म से 6 महीने तक बच्चों को माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। वो पढ़िए क्या लिखा है।
9: पहले 6 महीने में माँ के दूध के अलावा कुछ भी बच्चे को पिलाना दस्त और दूसरे रोगों को न्योता देना है। माँ का दूध न केवल पूरा आहार है, उसमें इतना पानी भी है जो भीषण गर्मी में भी बच्चे की जरूरत पूरी कर सके।
7: पर आप दोनों का टिकट लगेगा 30 रुपए।
5: पानी है
7: फिर से।
9: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
2: सिहतिया भैया, आपने बात की इष्टतम स्तनपान की, माने के एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या बच्चे के लिए केवल माँ का दूध। तो हमारे कुछ श्रोता SMS कर पूछ रहे हैं कि इसमें ऐसे क्या गुण होते हैं जो ये सभी बीमारियों को दूर रखने में मदद कर सकता है।
4: देखिए ये तो श्रोता आपके बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा अकेले का योगदान नहीं, हमको जो अवार्ड मिला है उसमें आपका रेडियो का पूरा आपका श्रोता का योगदान है। तो इस बढ़िया सवाल का हम बढ़िया जवाब देने का कोशिश करते हैं कि जो माँ का दूध है पूरा पोषण देता है संपूर्ण, इसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा, खनिज है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, सब जो बैलेंस डाइट होता है ना, संतुलित आहार, वो सब मिलेगा। इससे शारीरिक मानसिक विकास होगा, इसमें DHA है, फैटी एसिड है, माने शिशु के मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें एंटीबॉडी होता है, उससे जो है कि प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो मजबूत होता है। इससे यह है कि स्तनपान से माँ का शिशु के बीच जो है वो भावनात्मक एक संबंध बनता है, तो ये तो आजकल कर नहीं ना महिला लोग समझती है, शिशु को सुरक्षा स्नेह का भावना उससे होता है।
2: सिहतिया भैया, आपकी बातों से पता चलता है कि माँ का दूध तो रामबाण की तरह है, नवजात शिशु के लिए अमृत है। तो क्या ये कह सकते हैं सभी समस्याओं का निदान माँ के द्वारा विशिष्ट स्तनपान?
4: तो हमको लग रहा है कि आप तो कवि बन गए महाराज, लेकिन जो भी आप कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं, एकदम पक्का बात कह रहे हैं।
3: कुछ श्रोता पूछ रहे हैं कि पानी तो पिला सकते हैं ना, इतनी गर्मी में बच्चे को प्यास नहीं लगेगी?
4: हाँ, तो यही ना गलत फहमी है, माँ का दूध जो होता है उसमें तो 80% पानी है, तो ये ऊपर से पानी पिलाने का क्या जरूरत है। तो पानी दूध से मिल ही रहा है, साथ साथ में पोषण मिल रहा है, माने पानी फ्री या पोषण उसमें साथ साथ।

0: छह महीने तो होने दे।
1: दूध पी रोज
2: दादी,
3: रुक जा, पहले छह महीने तो होने दे।
2: क्यों नहीं?
3: क्योंकि छह महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा दस्त।
2: छह महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी?
0: अरे वाह,
4: बच्चे की सलामती, अच्छी सेहत और मस्तिष्क के पूर्ण विकास के लिए स्तनपान बहुत ही जरूरी है। आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों को एक बेहतरीन शुरुआत दें, स्तनपान के लिए पूर्ण सहयोग दें।
5: तो श्रोताओं, सुना आपने, इसका मतलब है कि केवल स्तनपान यानी जन्म से छह महीने तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, कोई पानी, घोल, जूस या खाना नहीं, कुछ और भी नहीं।
6: ये लो, टीकन भाभी भी अब हमारे साथ हैं। तो भाभी, समझा दिया आपने अच्छे से कमला और उसके परिवार को?
7: सबसे पहले तो श्रोताओं से माफी देर से आपके साथ जुड़ने के लिए, और फिर नमस्कार। अब आपकी बात का जवाब बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। असल में कमला की नवजात बच्ची इसलिए रोती थी, कमला उसे दिन में हर दो घंटे पर दूध पिला रही थी, लेकिन रात में उठकर नहीं पिला पा रही थी क्योंकि दिन भर बच्चे की देखभाल करके थक जा रही थी। लेकिन बच्चे को तो रात में भी 3 से 4 बार दूध पिलाना होगा, और अगर माँ की नींद पूरी नहीं होती या थकान कारण कई बार नहीं उठ पाती तो बच्चा तो भूखा होगा और रोएगा। इसलिए बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी घर के और सदस्यों को भी लेनी होगी।
5: टीकन भाभी, आपकी बात का मतलब समझ नहीं आया, बच्चे की जिम्मेदारी तो माँ की ही होगी।
7: मेरा मतलब है कि माँ के लिए भी बच्चे को जन्म देना एक नया जन्म लेने के बराबर ही है, इसलिए वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से काफी कमजोर महसूस करती है। उसके मन में भी बहुत सवाल उठते हैं क्योंकि एक तरह से बच्ची की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। ऐसे में उसे बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। बच्चे के बहुत काम होते हैं जो बाकी परिवार के सदस्य कर सकते हैं और माँ को आराम मिल सकता है।
8: देखिए, इसमें हम एक बात जोड़ना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा समस्या है कि घर के सभी लोग के अलावा आसपास का पड़ोसी सब माँ को बहुत सारा लगेगा सलाह देने के लिए, अनुभव के हिसाब से। बिना मांगे सलाह देना तो देश में ही है। हालांकि हम भी सलाह दे रहे हैं, लेकिन हमको तो कलेक्टर साहब अवार्ड न दिए हैं, हम पढ़ उड़ के देते हैं, जान समझ के देते हैं। तो कोई कहता है कि बच्चा रो रहा है तो घुट्टी पिला दो, तो कोई कहेगा कि गाय का दूध पिला दो, तो कोई पाउडर दे दो, तो मैंने ये सब तरह तरह का बात सब बोलेगा। तो इधर उधर का बात में नहीं पड़िए, आशा दीदी से, डॉक्टर साहब से सलाह लीजिए। आई तो रेडियो आपका है ये है, फोन से बात करके पूछिए सवाल।
7: ये तो बिल्कुल सटीक बात है। इतने सुझाव मुझे भी तो 2 बच्चों के जन्म के समय जब मैं अस्पताल से घर आई, पूरा कुनवा खुश तो था ही, लेकिन उतनी ही सलाह भी मिली। लेकिन मैं और सेतिया जी बहुत क्लियर थे, हम वही करेंगे जो हमें डॉक्टर ने बताया है।
5: टीकन भाभी, आप तो स्वयं अनुभवी हैं, तो महिलाओं को किस प्रकार की समस्याएं आती हैं?
7: इसमें तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं, पर सबसे पहले महिलाओं को लगता है कि उनका दूध पूरा नहीं पड़ रहा या दूध बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है। लेकिन मैं कहूंगी कि शिशु को माँ का दूध बिल्कुल सही मात्रा में मिलता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और जितना अधिक बच्चा स्तनपान करेगा उतना ही माँ का दूध बढ़ेगा, और दूध की मात्रा बढ़े उसके लिए माँ को अपने आहार पर ध्यान देना होगा। अच्छा और पौष्टिक भोजन, पर्याप्त आराम और मानसिक शांति, यही कुछ चीजें हैं जो माँ का दूध बढ़ाने में मदद करती है।
6: स्तनपान के दौरान क्या माँ को किसी खास प्रकार के आहार का सेवन करना चाहिए?
7: माँ को पोषक तत्वों से भरपूर आहार जैसे कि हरी सब्जियाँ, फल, दालें, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। दूध पिए, पानी पिए और विटामिन्स का सेवन करें, और साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र पर सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सूखे राशन का सेवन माँ के पोषण के लिए बहुत जरूरी है।
5: टीकन भाभी, कई माताएं शिकायत लिख रही हैं कि बच्चे को दूध पिलाने में परेशानी हो रही है, बच्चा सही से नहीं पी पा रहा या माँ को बैठने में दर्द होता है।
7: यह तो आम शिकायत है। माँ और बच्चे की सुविधा के अनुसार स्तनपान की सही मुद्रा, ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशन बहुत आवश्यक होती है। माँ बच्चे के सिर को अपनी बांह के सहारे रखे और बच्चे का पेट माँ के पेट से सटा होना चाहिए ताकि वह सही तरीके से दूध पी सके। यह नई माताओं के लिए सबसे आसान और आरामदायक मुद्रा होती है। 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति है।
6: लेकिन कई बार माँ कहती है कि बैठकर दूध पिलाने में बहुत थकान होती है, ऐसे में क्या कोई ऐसी मुद्रा है जिसमें माँ भी आराम से रह सके?
7: कोशिश करें कि बैठकर ही बच्चे को दूध पिलाएं, सीधे बैठें और हाँ, दूध पिलाने से पहले स्तन को पोछें। आपका स्तन शिशु के मुंह में जाएगा तो सफाई जरूरी है। अपने शरीर हाथ की सफाई को प्राथमिकता दें। बच्चे का सिर, गर्दन और शरीर एक सिद्ध में होना चाहिए ताकि वह आराम से दूध पी सके। माँ को भी आरामदायक स्थिति में बैठना चाहिए, पीठ के पीछे तकिया लगाकर या कुर्सी पर बैठकर। बच्चे के सिर को हाइट देने के लिए एक तकिया भी रख सकते हैं। और आप दूध पिलाने से पहले खुद पानी जरूर पिएं। दोनों स्तन से दूध पिलाएं। दूध पिलाते समय बच्चे का सिर सहलाएं, बात करें, गाने गाएं और अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल दें।
5: लेकिन टीकन भाभी, जब शिशु स्तन छोड़ दे तो क्या करना चाहिए?
7: यह तो बहुत जरूरी सवाल है। शिशु पेट भरने पर स्तन छोड़ देते हैं, स्तनपान के बाद बच्चे को डकार दिलाना जरूरी है ताकि उसे गैस या उल्टी की समस्याएं ना हो। कई बार बच्चे उल्टी कर देते हैं क्योंकि उनको डकार नहीं दिलवाते हैं, और इसमें सेहतिया जी बेहतर बताएंगे क्योंकि हमारे दोनों बच्चों के टाइम उन्होंने ही यह काम किया था।
8: देखिए, डकार दिलाने का काम तो मेरा ही था। अब देखिए, मिल बांट के ना बच्चा पालेंगे, वो सिर्फ औरत का थोड़ी जिम्मेदारी है। तो टीकन देवी जो है, वो दूध पिलाते पिलाते थक जाती थी बेचारी। तो ये जो स्वस्थ सिंह है, जल्दी जल्दी पी लेता था, बड़ा वो इंटेलिजेंट लड़का था। ये लाभांतरी जो है, थोड़ा सा नहीं पी पाती थी तो उसको समय ज़्यादा लग जाता था। तो दूध पिलाने के बाद हमको बेचारी जो टीकन है, वो बच्चा पकड़ा देती थी या खुद थोड़ा आराम कर लेती थी। तो सबसे पहले हम कंधा पर कपड़ा रखते थे और उसको थोड़ा बहुत बच्चा के लिए उसको निकालते थे और फिर उसको गोदी में लेकर खड़ा होकर उसका पीठ सहलाते थे। और बच्चा का सिर जो है वो कंधा पर होना चाहिए, बात एकदम नोट करिएगा। और उसके बाद जो है बच्चा को शांत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और उसको तब तक सहलाइए कि जब तक बच्चा डकार न ले। एकदम लेकर डकार, देखिए ना, माना अजमाया बात कह रहे हैं।
5: तो क्या टीकन भाभी, स्तनपान कराना माँ की सेहत के लिए भी सही होता है?
7: मैं एक बात दोहराना चाहूंगी कि दोनों स्तन से दूध पिलाएं, नहीं तो दर्द की संभावना बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा। यदि दूध बहुत ज्यादा हो तो एक साफ बर्तन में निकाल लें और चम्मच से बच्चे को पिला सकते हैं। और जानकारी के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, आशा दीदी या किसी भी सरकारी चिकित्सा केंद्र में जा सकते हैं।
5: तो क्या टीकन भाभी, स्तनपान कराना माँ की सेहत के लिए भी सही होता है?
7: बिल्कुल, स्तनपान करने से ब्रेस्ट और ओवरी के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। माँ की प्रजनन शक्ति, फर्टिलिटी देर से लौटती है और प्रसव के बाद खून बहने की समस्या भी कम होती है।
6: अच्छा, तो टीकन भाभी, स्तनपान कराने वाली माँ को और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जरा बताएंगे?
7: याद रखिए, माँ जितनी ज्यादा खुश और तनाव मुक्त रहेगी उतना ही अच्छा दूध बनेगा। साथ ही पर्याप्त नींद जरूरी है ताकि माँ की सेहत ठीक रहे और वो बच्चे की सही देखभाल कर सके। परिवार को भी माँ की मदद करनी चाहिए। गृहस्थी के कामों में हाथ बटाना, माँ को मानसिक रूप से सहयोग देना बहुत जरूरी है।
5: टीकन भाभी, एक सवाल और आया है कि 0 से 6 महीने के दौरान बच्चे के शारीरिक विकास को कैसे मापेंगे?
7: पहले 6 महीनों में शिशु बहुत तेजी से बढ़ता है और विकसित होता है। उसके मस्तिष्क का बायां भाग दाएं भाग से संवाद करना शुरू कर देता है, जिसका अर्थ ये है कि वे अपने शरीर का बेहतर समन्वय कर सकते हैं। आप और आपका शिशु एक दूसरे को समझने लगता है। वे आपको बताएगा कि वे खुश या दुखी और शब्दों का प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगा। इसलिए जरूरी है कि घर के सभी व्यक्ति उनसे बात करें। जितनी बात होगी उतना ही शिशु उतनी ही रिस्पॉन्ड करेगा। नहाते समय, दूध पिलाते समय, कपड़े बदलते समय शिशु से बात करिए। पॉजिटिव बातें करिए।
8: अगर बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास की बात करें तो कुछ तो इस मापदंड में बने हुए हैं, तो हम एक दो को बता देते हैं कि जो 0 से लेकर 6 महीना का बच्चा है उसका हम कुछ बात बताते हैं कि 0 से 3 का पहला जो बच्चा है तो क्या क्या करेगा, तो पलटने लगेगा, सिर उठाने लगेगा, चीजों को देखने लगेगा, देखिएगा कि सब कर रहा है कि नहीं। फिर जो 3 से 6 महीना का जब हो जाएगा तो चीज को पकड़ने लगेगा, कुछ शब्दों को भी थोड़ा बहुत समझने लगता है।
7: हम अगर ग्रोथ की बात करें तो वो आपको अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर से बच्चे का स्मार्ट कार्ड मिला होगा, उसमें सभी कुछ दिया होगा कि बच्चे का हर महीने में कितना वजन बढ़ना चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, सिर की परिधि कैसे नापें, कब कब बच्चे की जांच करवानी चाहिए, बच्चे के शारीरिक वृद्धि कितनी हुई, विकास के क्या मानक हैं, इनका चार्ट में विस्तार से विवरण दिया हुआ है।
8: अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों का विकास सामान्य से कम है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो रहवे करता है सबके आसपास में, तो बच्चों के विकास में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बच्चों के साथ समय बिताइए, उनके विकास पर ध्यान रखिए, बच्चों को सुरक्षित स्वस्थ दीजिए वातावरण जिससे उनका विकास सही तरीका से हो सके।

0: और उनको थोड़ा बहुत खिलौना उलौना दीजिएगा तो चीज़ को पकड़ना शुरू कर देंगे। आ एक बात का ध्यान रखिएगा खिलौना देने समय कि प्लास्टिक का कांच का चीज़ नहीं दीजिएगा, चोट उट लगा लेगा, घूंट टूट लिया, अंदर पेट में ले लिया, निगल लिया तो हो जाएगा दिक्कत।
1: तो टीकन भाभी, क्या इतने छोटे बच्चों को भी टीके लगते हैं?
2: सही बात टीकाकरण की तो वैसे तो आपके स्मार्ट कार्ड में सभी लिखा है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जन्म पे तो 3 टीके लगते ही हैं। पहला BCG यानी तपेदिक से बचने के लिए, दूसरा हेपेटाइटिस बी संक्रमण से सुरक्षा के लिए, OPV यानी शून्य खुराक पोलियो से बचाव के लिए मौखिक पोलियो वैक्सीन।
0: 6, 10, 14 सप्ताह की आयु पर भी बहुत सारा टीका होता है, पहला दूसरा तीसरा डोज, माने पहला 6 पर, दूसरा 10 पर, तीसरा जो है 14 पर लग जाता है।
2: और 6 महीने की आयु पर भी टीके लगते हैं, यानी सारी जानकारी आपके बच्चे के स्मार्ट कार्ड में उपलब्ध है। इन टीकों को सही समय पर देने से शिशु को विभिन्न गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है। और अगर किसी माँ को स्तनपान से जुड़ी कोई समस्या हो तो अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र या आशा दीदी की सलाह ले सकते हैं।
3: तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो थोड़ा हैवी था, लेकिन आपने आज जाना कि स्तनपान बच्चे के लिए अमृत समान है। फिर दूध पिलाने के समय भी कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जिससे केवल बच्चा आसानी से दूध तो पी ही सकता है लेकिन माँ को भी कोई तकलीफ नहीं होती, और फिर जरूरी टीकों की जानकारी।
1: तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास प्रस्तुति। उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके हमारे एपिसोड से जुड़े कुछ सवाल हैं, तो आप हमें एपिसोड के दौरान हमारे नंबर पर 1204060205, दोहरा रही हूँ, फिर से सुनिएगा, 1204060205 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या SMS भी कर सकते हैं।
3: बिल्कुल वैष्णवी, अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ अपने श्रोताओं से। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने नन्हे मुन्नों को सबसे बेहतरीन उपहार माँ का दूध दीजिए,
2: क्योंकि स्वस्थ बच्चा खुशहाल परिवार की निशानी है।
3: तो टीकन भाभी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसी जानकारियां भी दी जिनको जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन शपथ लिए बगैर तो हम आपसे विदा नहीं लेंगे।
4: हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम सब अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई, टीवी हारेगा देश जीतेगा।
3: बिल्कुल, अब मुझे समझ आया कि सेहत ही सबसे बड़ा धन है, इसे बनाए रखें, सही जानकारी लें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए सेहत सही लाभ कई के साथ। नमस्कार।
5: भाई साहब, टाइम क्या हुआ है?
6: पता नहीं यार, मैं इस शहर में नया हूँ।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना। इसीलिए

0: अभियान।
1: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना।

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
2: आइए हम सब मिलकर जल बचाते हैं। आप जब भी ब्रश करें एवं दाढ़ी बनाएं, सिंक में बर्तन धोएं, तो जरूरत न होने पर नल हमेशा बंद रखें। ऐसा करने से हम 6 लीटर हर 1 मिनट में पानी बचा सकते हैं। नहाते समय भी बाल्टी से पानी को व्यर्थ न बहाएं। जहां कहीं भी नल लीक करे उसे तुरंत ठीक करवाएं, नहीं तो उसके नीचे बाल्टी या कटोरा रखें और फिर उस पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल है तो कल है। सुनो शारदा 90.8 एफएम और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।

0: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
0: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नाम तो सुना ही होगा।
2: राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे सायमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई सुनते हैं आरजे सायमा को खुशबू के साथ।
3: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे सायमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
4: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, हम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
3: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
4: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुठलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
3: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज ए इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
4: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है ये हमारे हमारे अंदर, ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है, वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
3: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी, छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
4: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इंपैक्ट क्रिएट कर सके, और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
2: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरुशादा 90.8 एफएम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
1: Hi everyone, this is Dania Joshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका वही पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है खेत खलियान। जी हां किसान मित्रों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है कि आप तक समसामयिक जानकारी पहुंचती रहे और आपकी जो खेती है वो उन्नत हो, क्योंकि हमको आज के समय के अनुसार अपनी खेती को करना है ताकि खेती घाटे का सौदा ना बन पाए। जो हमारे किसान मित्र खेती के साथ साथ कोई और भी काम करते हैं, चाहे वो पशुपालन हो, मधुमक्खी पालन हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि खेती के साथ साथ आपको जो भी अच्छा लगता है व्यवसाय वो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा कहना आपसे इतना है कि आप खेती तो करते ही हैं, पशुपालन जरूर करें साथ में, क्योंकि खेती से तो हमें 3 महीने में 6 महीने में हमको उत्पादन मिलता है, लेकिन पशुओं से तो हमें कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे किसान बहन भाई केवल खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि खेती और जो पशु हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। तो खेती भी कीजिए, साथ साथ पशु पालन भी करिएगा, ताकि कभी भी आपको कोई खेती में घाटा आपको हो जाता है तो उसकी भरपाई पशुओं से हो जाए और आपके घर का जो खर्च है वो भी आसानी से चलता रहे। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। और आज के खेत खलियान कार्यक्रम में जैसा आपको पता ही है कि हम सरकार की किसी ना किसी योजना के बारे में आपको बताते हैं, तो आज जिस योजना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना। तो ये क्या है, तो आपको बता दें कि किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए और देश में फल सब्जी आपूर्ति बेहतर करने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी बात को लेकर ऑपरेशन ग्रीन मिशन की शुरुआत की गई है। इसका फायदा इतना हुआ है कि राज्यों के विभिन्न बाजारों में सप्लाई बेहतर हुई है। इससे बाजार में फल सब्जी के भाव में उतार चढ़ाव थम गया है। ऑपरेशन ग्रीन मिशन को कामयाब बनाने के लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत दो तरह से प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। पहला, किसानों के खेत से फसल को बाजार तक पहुंचाने का ढुलाई खर्च 50% तक सरकार देती है। इससे किसान भाइयों और कारोबारियों पर बोझ कम होता है और बाजार में कीमतें नियंत्रित रहती हैं। और दूसरा, कच्ची फसलों और फलों को बाजार तक पहुंचाने के दौरान वो खराब ना हो जाएं, इसके लिए उन्हें लंबे समय तक सही ढंग से रिजर्व भी रखा जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन योजना में पहले केवल 3 सब्जियां आलू, प्याज और टमाटर को ही जोड़ा गया था, लेकिन इस योजना की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने इस योजना में 22 फसलों को और जोड़ दिया है। यानी कि अब इस योजना के माध्यम से हमारे किसान भाई अपनी 25 फसलों को आसानी से बेच सकते हैं और वो भी अच्छे दाम पर। तो किसान भाइयों, आगे भी ऑपरेशन ग्रीन मिशन के बारे में और भी आपको बातें बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सुनवाते हैं एक रागनी, क्योंकि काफी देर से आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि बातचीत भी होती रहे और साथ साथ हमको रागनी भी सुनने को मिलती रहे। तो आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आपको सुनवाते हैं हरेंद्र नागर और ज्ञानेंद्र सरधाना से एक रागनी, किस्सा रहेगा महाभारत का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे हरेंद्र नागर और ज्ञानेंद्र सरधाना से ये रागनी, किस्सा था महाभारत का। और जैसा कि आप जानते हैं, आज के कार्यक्रम खेत खलियान में हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना की। किसानों को फल और सब्जियों के सही दाम दिलाने के लिए सरकार ने इस योजना में केवल उन्हीं फसलों को जोड़ा गया है जो जल्दी खराब हो जाती हैं। इसलिए फसलों के खराब होने से पहले ही किसानों को फसलों का अच्छा रेट मिल जाता है। इस योजना से केवल किसानों को ही नहीं बल्कि ग्राहकों को भी लाभ मिलता है। सरकार ने इस योजना के माध्यम से किसानों को सीधा ग्राहकों से जोड़ दिया है। इस योजना में सरकार FPO, मार्केटिंग फेडरेशन, स्वयं सहायता समूह और फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को अनुदान देती है। और अब बात करते हैं ऑपरेशन ग्रीन मिशन के लाभ की, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं रविंद्र खालोर, तो आइए सुनते हैं ये उपदेश।

तो किसान मित्रों, अभी आप रविंद्र खालोर से उपदेश सुन रहे थे और उपदेश जो होते हैं कहीं ना कहीं हमें जीने की राह बताते हैं और बहुत कुछ जीवन में सिखाते हैं, बुराइयों से हमको बचाते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम खेत खलियान में ऑपरेशन ग्रीन मिशन की, तो आपको बता दें कि इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। ऑपरेशन ग्रीन के माध्यम से किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत दिलवाना है ताकि हमारे किसान भाइयों को अपनी फसलों को कम दामों में ना बेचना पड़े। ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना के माध्यम से टमाटर, प्याज और आलू के अलावा सभी फल सब्जियों के अधिक से अधिक उत्पादन करने पर बाजारों में परिवहन के माध्यम से भेजने पर कुल लागत का 50% अनुदान के रूप में किसान भाइयों को दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से उन किसानों को भी लाभ मिलता है जो अपने फल सब्जियों को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोर या फिर यूं कहें वेयर हाउस में रखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है ऑपरेशन ग्रीन मिशन। जितनी भी कृषि संबंधी योजनाएं होती हैं उनका अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र जाना ही होगा। वहां पर जो वैज्ञानिक हैं, अधिकारी हैं, उनसे आप बातचीत कीजिएगा। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही ऑपरेशन ग्रीन मिशन की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक और रागनी। कलाकार हैं केशव कुमार और ज्योति। किस्सा रहेगा रामायण का।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे केशव कुमार और ज्योति से ये रागनी, किस्सा था रामायण का। और इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जाने। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 एफएम के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। भाई, जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी। अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे, जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन

नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: सफाई ही आधा ईमान है,
2: यानी स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है।
1: और ये भी तय है, स्वच्छ रहकर ही हम तमाम बीमारियों को मात दे सकते हैं।
2: कैसे, कब कब हाथ धोने चाहिए, चलिए ये हम आपको बताते हैं।
1: खाना बनाने से पहले,
2: खाना खाने से पहले,
1: बच्चों को खाना खिलाने से पहले,
2: शौचालय के प्रयोग के बाद,
1: बच्चों के मल को साफ करने के बाद,
2: बाहर से आने के बाद,
1: पशु को छूने और उनके मलमूत्र को साफ करने के बाद,
2: खांसने और छींकने के बाद साबुन और साफ पानी से अपने हाथों को धोएं और हर बार हाथों को कम से कम 40 सेकंड तक धोएं।
1: हमारा भविष्य हाथों में है,
2: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से
2: सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: जब सवाल ही हिचक कर पूछा जाए तो जवाब में ना होना लाजमी है।
1: माँ, मुझे बाहर जाना है।
0: जितना हिचक कर यह सवाल पूछा जाता है उतना ही डर जवाब देने वालों की आंखों में देखा जाता है। बेशक यह घबराहट सुरक्षा और समाज की मर्यादा का है, लेकिन आजादी की मर्यादा सिर्फ एक औरत पे ही क्यों? यह डर का लिबास औरत ही क्यों पहने? क्या यह समाज इस काबिल नहीं कि औरत की आजादी की जिम्मेदारी ले सके? हमारा समाज दो सोचों में क्यों बटा हुआ है? एक की सोच दूसरे का डर बन जाती है। अगर हम सिर्फ इंसान की बात करें, शरीर के लिबास को भूलकर क्या हम सब बराबर नहीं? ऐसे कई सवाल मन में लिए हम सब जीते हैं, पर कभी सोचा है कि कहीं जवाब हम खुद ही तो नहीं? किसने बनाई यह प्रथा कि समाज के दायरे में ही बनेगी स्त्री की कथा? क्यों नहीं जाए मेरी बेटी रात के 8 बजे के बाद? यह माँ के सवाल का जवाब क्या दे पाएगा यह समाज? सपनों के पंखों को खोलने का यह हक बेटियों को भी होना चाहिए। यह बात हर इंसान के कानों में जानी चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी बातें दीवारों से ज्यादा इंसान के दिमाग में लिखी जाने की जरूरत है। आइए इन सवालों के जवाब को ढूंढते हुए विस्तार में बात करते हैं।
1: ये मेरी बचपन की दोस्त है, इसके शादी के लिए मैं कब से तैयारी कर रही थी। वहाँ मेरे और भी दोस्त होंगे, श्याम वहाँ पे क्या करेगा?
2: बेटा आपको बेटा ही माना होगा, यहाँ पर ओला उबर भी नहीं चलता और इतनी रात को ऑटो से अकेले आना सेफ नहीं होगा।
1: हर किसी को ऐसा क्यों लगता है कि बेटियाँ अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकती? आखिर थोड़े समय में मुझे बाहर जाना है, बैंकिंग की तैयारी करनी है, हर जगह मैं श्याम को साथ नहीं ले जा सकती।
2: तब की तब देखेंगे, पर अभी तो तुम श्याम को अपने साथ लेकर जाओ, वो तुम्हें छोड़कर वापस आ जाएगा। इतनी रात में मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकता, और वो भी नई जगह में।
1: पापा, अच्छा मैं अपने बाकी दोस्तों के साथ आ जाऊंगी, वो तो ठीक है।
3: अगर पापा कुछ कह रहे हैं तो तू सुन क्यों नहीं ले रही? तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, पिता ने तुम्हारे, फिक्र तो होगी ही ना।
1: तो मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, लेकिन मेरा भी तो मन करता है कि मैं खुद के दम पे कुछ करूँ। श्याम मुझसे छोटा है, पर हर बार मुझे उसको साथ लेके जाना पड़ता है।
3: अगर तुम्हें जाना है तो श्याम को साथ लेकर जाओ, अब हम तुमसे और बहस नहीं कर सकते।
2: तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है, हम तुम्हें रोक नहीं रहे जाने से, बस इतना कह रहे हैं कि श्याम को अपने साथ ले जाओ। ज्यादा है तो वो तुम्हें छोड़कर आ जाएगा, और फिर कॉल कर देना, वो तुम्हें लेने आ जाएगा।
3: वैसे भी लड़कियों को अपनी सुरक्षा के बारे में खुद ही सोचना पड़ता है।
1: ठीक है ठीक है, अब मेरे यहाँ कौन ही सुनेगा, जाकर श्याम को बोल दो तैयार हो जाए। अब छोड़ने जा ही रहा है तो साथ ही चल चले।
2: बस वो थोड़ा बाहर गया है, आता ही होगा, जब तक जाकर तुम तैयार हो जाओ।
3: जाओ अब खुश हो जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, शादी के बाद पहुंचने का इरादा है क्या तुम्हारा?
0: कुछ इस तरह हर बार घर में नोक झोंक होती है और झुकना बेटी को ही पड़ता है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, और कब हम इस चीज को बेहतर कर सकते हैं, कब हम इस चीज को बदल सकते हैं? कहीं ना कहीं माँ बाप भी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो उस बेटी का क्या दोष जिसकी आजादी कहीं छिन सी गई है? ये एक उदाहरण नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको एक और छोटा सा उदाहरण देते हैं।
3: मम्मी, मेरी महिंद्रा कोचिंग का एंट्रेंस क्लियर हो गया, मेरा इतना अच्छा मार्क्स आया कि मुझे 60% की स्कॉलरशिप भी मिल रही है। अब हमारा काम आधे में ही हो जाएगा, बस इतनी सी दिक्कत है कि कोचिंग करने के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा।
1: दिल्ली? अरे दिल्ली क्या करोगे जाके, कानपुर में ही कर लो।
2: अरे महिंद्रा कोचिंग तो अपने कानपुर में भी है, वहाँ क्यों नहीं कर रही? कोचिंग तो आखिर सेम ही है।
3: नहीं, मुझे दिल्ली की कोचिंग में करनी है, वहाँ के फैकल्टी सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं। दिल्ली की कोचिंग थोड़ी महंगी होती है, पर इसीलिए तो मैंने दिन रात मेहनत करी है।
2: वो सब तो ठीक है बेटा, पर सच कहूँ तो दिल्ली का नाम सुनकर दिल दहक जाता है, जब खासकर लड़कियों की बात होती है। हर दूसरे दिन न्यूज में कुछ ना कुछ सुनने में आता है, अब तुम ही बताओ ये सब सुनकर कैसे भेज दूं मैं?
3: लेकिन मैं कौन सी पहली लड़की हूँ जो दिल्ली पढ़ाई करने के लिए जा रही है? ना जाने रोज कितनी लड़कियाँ जाती है वहाँ पढ़ने के लिए, क्या उन सब के भी माँ बाप ऐसा ही बोलते होंगे?
1: हमें उनका नहीं पता, पर हमें तुमको भेजते हुए बहुत डर लग रहा है।
3: अगर हम ऐसे ही डरते रहेंगे तो हम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बस खुद में आत्मविश्वास होना चाहिए, अगर खुद में भरोसा रहेगा तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
1: बेटा, हम तुम्हारी बात समझते हैं, पर माँ बाप का दिल है, हम भी क्या करें, टीवी पे इतना कुछ सुनकर हिम्मत नहीं होती।
3: पर माँ, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ और आप दोनों का नाम रोशन करना चाहती हूँ।
1: तो ठीक है, मैं तो परमिशन दे दूंगी, पर पापा को मना सकती हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
3: पापा, अब आप ही कुछ बोलो। मैं आपका डर समझती हूँ, पर मुझे भी तो कुछ करके दिखाना है।
2: बेटा, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहते या बाहर नहीं भेजना चाहते। तुम जिंदगी में कुछ बनो तो हमारा ही सीना गर्व से चौड़ा होगा, पर बस बाहर भेजने में थोड़ा डर सा लगता है, क्या करें।
3: प्लीज पापा, प्लीज भेज दो।
1: अच्छा ये बताओ, तुम्हारे साथ भी कोई कानपुर से जा रहा है?
3: मम्मी, अभी तो कोई नहीं जा रहा है, पर रीना वहीं पर रहती है। उसने कहा है कभी जरूरत पड़ेगी तो मेरी मदद कर देगी।
1: अब आप ही बताओ क्या करें।
2: चलो ठीक है, हम तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे। तुम जाओ, लेकिन तुम्हारे रहने और खाने पीने का बंदोबस्त हम खुद चल कर देखेंगे, और तुम्हें हर रोज हमें कॉल करना होगा।
3: हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, आप चिंता मत करो।
1: चलो ठीक है, बता दो कब जाना है और कितना सामान लेकर जाना होता है, वो भी तो खरीदना है।
3: थैंक यू, मैं जा रही अपने सारे दोस्तों को बताने कि मुझे परमिशन मिल गया जाने का।
0: जैसा कि अभी आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी चीज की रजामंदी के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी, और हम जानते हैं कि अगर इसी जगह पर एक लड़का होता तो शायद इतनी सफाई देने की जरूरत ना थी, और शायद माँ बाप भी इतना ज्यादा नहीं घबराते, हालांकि वो और खुश होते। हम कितना भी रोक टोक को हिफाजत का नाम दें, लेकिन इस तरह हम लड़कियों की आज़ादी छीन रहे हैं, और ये बात किसी भी सूरत में बदली नहीं जा सकती या झुटलाई नहीं जा सकती, क्योंकि आज़ादी सबका हक है, और इस हक को हिफाजत के नाम पर नज़रअंदाज करना बिल्कुल गलत है। हमें इससे आगे बढ़कर, हमें रोक टोक से ऊपर उठकर उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, और इससे हम लड़कियों को सपने देखने की और उस सपने को पूरा करने की आज़ादी दे सकते हैं। और अक्सर हमने सपने दबते हुए देखे हैं, जिससे लड़कियां काफी बार गलत निर्णय लेने पर मजबूर हो जाती हैं। हमने पहले ऐसे काफी किस्से सुने हैं जहां पर रोक टोक के कारण और प्रेशर के कारण लड़कियां अपने सपनों को जीने से ज्यादा अपनी जान देना आसान समझती हैं। ऐसी मानसिकता को हमें दूर रखना होगा, जिससे लड़कियों के मन में डर बैठे और वो खुद को बांध लें। आजादी ख्वाब नहीं, हक है, और बेशक डर कर रहना ज्यादा आसान है लड़ने से दोनों को, लेकिन ऐसा करने से हम आज और कल दोनों को ही डर का लिबास पहनने पर मजबूर कर रहे हैं। तो आइए इस बारे में आगे बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हैं साकिब और साक्षी। सबसे पहले मैं साक्षी की तरफ जाऊंगा और जानना चाहूंगा कि साक्षी, ये स्टोरी जो हमने रिलेट करने की कोशिश करी, ये कैसी रही, और क्या हमारे निजी जीवन में वाकई ऐसा होता है?
1: जी हाँ फारूक, बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो जब मैं ये एडमिशन लेने आई थी दिल्ली में, तो काफ़ी कन्विंस करना पड़ा था पेरेंट्स को कि नहीं, मैं अपना खुद ख्याल रख सकती हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, मम्मा प्लीज़ जाने दो। जब वो यहाँ पे आए थे मेरे साथ एडमिशन कराने, जब हॉस्टल की बात आई तो काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, फिर भी उन्होंने अफोर्ड किया हॉस्टल मेरी सेफ्टी के लिए, कि बाहर पीजी नहीं, आना जाना होगा, क्या होगा, कैसे मैनेज करेगी वो करके, तो उन्होंने फिर भी उन्होंने अफोर्ड किया और हॉस्टल ही दिलाया मुझे, कैंपस के अंदर दिलाया। तो ये चीज़ें काफ़ी फेस करनी पड़ती है कि कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे मेरी खुशी के लिए, या फिर मैं उनकी खुशी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, इस सोच की वजह से कि लड़कियाँ आज सेफ नहीं है।
4: साक्षी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूँगा साक्षी, क्योंकि दिल्ली के आसपास की लड़की हैं और थोड़ी सी जद्दोजहद करने के बाद इनके पेरेंट्स ने अलाउ तो कर दिया, लेकिन बहुत ऐसी बच्चियाँ, बहुत ऐसी लड़कियाँ हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, दूर दराज के गाँव में अभी तक ये प्रथाएँ जारी हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा, मैं अपने घर की कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जो उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कि मेरी मामा है, मेरी मॉम को फिफ्थ स्टैंडर्ड के बाद उनको स्टॉप कर दिया गया, शी वॉज नॉट अलाउड टू स्टडी। द रीज़न बिहाइंड दैट, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि वो एक गर्ल थी, और उनके सारे भाई, उनके चार भाई थे, उन सबको पढ़ने के लिए बाहर भी भेजा गया, दूर में स्कूल में भी भेजा जाता था, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब थोड़ा दूर था स्कूल तो उन सब के लिए साइकिल का भी इंतजाम किया गया था, लेकिन मेरी मॉम बहुत पढ़ना चाहती थी, वो कुछ बनना चाहती थी, और उस ज़माने में वो चाहती थी कि घुड़सवारी करें, तो वो छुप छुप के घुड़सवारी करती थी, वो शूटर भी बनना चाहती थी। जब कभी कोई स्पेयर में वहाँ पे जो बंदूक की गोलियाँ वगैरह होती थी उसे छुपा के वो उसे चलाती थी, और घुड़सवारी भी करती थी, लेकिन ओपनली वो नहीं कर पाती थी। स्कूल जाने का तो बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये आसानी से छुप छुप के डेली स्कूल तो नहीं जा सकते थे, तो उनको रुकना पड़ा। और जब भी कभी इससे संबंधित वो सवाल पूछती थी तो बस एक ही जवाब मिलता था, तुम लड़की हो, तुम स्कूल जाकर क्या करोगे, तुम्हें अच्छा घर मिलेगा, वहां पे तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, दौलत शोहरत सब चीजें होंगी, ओवरऑल ससुराल में जाके घर ही संभालना है, फिर तुम्हें पढ़ के क्या करना है, क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट करना चाहती हो। तो ये थोड़ा सा अलग है साक्षी की जिंदगी से और मेरी मॉम की, या फिर मेरी चचादाद बहनें हैं उनको भी कुछ समय तक उनको रोका गया था। उसका कारण ये था कि स्कूल का रास्ता जो है बाजार के रास्ते से ज्यादा था, सो शी वॉज नॉट अलाउड टू स्टडी फर्दर फॉर हाई स्कूल।
1: साकिब के मम्मा के जमाने में का अगर देखें और मेरी मम्मा के जमाने का अगर देखें कि आज जमाना पहले पढ़ाना नहीं चाहता था किसी भी रीजन की वजह से, आज मेरे मम्मा पापा हमें पढ़ाना चाहते हैं, तो वो क्या चीज है जो उन्हें रोकती है, मतलब वो करना चाहते पर कर नहीं पाते, उस समय वो करना नहीं चाहते थे।
2: जैसा कि साक्षी आपने बताया और जैसा साकिब ने बताया अपनी मॉम के बारे, तो यहाँ पर हमें कुछ दो तीन सिचुएशंस दिखी। सबसे पहले साक्षी ने बताया कि उसका एडमिशन हो गया था और उसके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे इस कॉलेज के हॉस्टल में उसे रखना, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ रखा, मतलब उन्होंने पैसे को ध्यान नहीं दिया कि पैसे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि उन्हें लगा उनकी बच्ची यहाँ सेफ है। वहीं अगर बात करें साकिब की मॉम की, तो उन्हें इंटरेस्ट था लेकिन उन्हें नहीं पढ़ाया गया। यहाँ पर बात पैसे की नहीं थी, यहाँ पर बात और शायद कोई दूसरी नहीं थी सिवाय इस चीज़ के, जिस चीज़ पर साकिब ने भी जोर दिया कि तुम एक लड़की हो। पिछले ज़माने से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं हमारी सोचने की वो जो लड़के और लड़कियों को डिफ्रेंशिएट करते थे वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी जगह ऐसा देखा जाता है कि पैसे की वजह से या किसी और भी रीज़न से लड़की दो कदम पीछे ही रहती है। तो साकिब, अभी जैसा आपने अपनी माँ के बारे बताया, आपकी अगर कोई बहन है या आपके बच्चे जब होंगे, आप किस तरह से अपनी माँ की जो स्टोरी है उसको आप नहीं चाहोगे कि वो आपके बेटी पर या आपकी बहन पर पड़े, आप उसके लिए क्या प्लान करते हो या क्या माइंड में आपके?
4: बहुत अच्छा सवाल पूछा और इसके लिए मैं बस इतना ही कहूँगा, लेकिन इस सवाल पे आने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो हमारा समाज है, ये हमारी जितनी प्रथाएं बनी हुई है कि लड़कियों को एडुकेट ना करें, लड़कियों को आगे ना बढ़ाएं, और जो सिनेरियो गांव का है और शहर का है वो दोनों डिफरेंट है। अभी भी गाँव में ऐसी प्रथाएँ हैं, वीमेन्स आर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, वीमेन्स आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड एंड एन्जॉय टी एट द टी स्टॉल, तो ये सब प्रथाएं गांव में अभी भी, बाहर जाकर औरतों को चाय पीना अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे शहर में है, शहर में औरतें लड़कियां हैं वो सब टी स्टॉल पे जा सकती हैं, चाय पी सकती हैं, रेस्टोरेंट में बैठ सकती हैं, लेकिन गांव में ऐसी चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ी बात तो है कि जो विमेंस है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, थिंकिंग कैपेबिलिटी, वो मैच्योर नहीं हो पाती इस वजह से, और वो आगे चल के वो इतना बूस्ट नहीं हो पाएंगे। और सबसे बड़ा उदाहरण इसका ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर गर्ल्स के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि ठीक है तुमको अलाउ तो किया जाता है, लेकिन सर्टेन इंस्ट्रक्शन है तुम्हारे लिए कि तुमको ये फॉलो करना पड़ेगा, तुमको कोचिंग जाना है, सुबह जाओगी और शाम तक आओगी, इतने देर में तुम्हें इतने टाइम से इन्फॉर्म करना है कि तुम सेफ हो, देन तुमको शाम में टाइम पे आ जाना है, सूरज ढलने से पहले आ जाना है। तो ये सब चीज़ें उनके जो कॉन्फिडेंस है उस पर इम्पैक्ट करता है, और कॉन्फिडेंस पे ऐसा इम्पैक्ट करता है कि एट द टाइम जब वो वेल एडुकेटेड हो जाती हैं और जॉब के लिए जाती हैं, तो वो जब 100% तैयारी करती हैं तो वो 25% डिलीवर करके आते हैं, क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। वहीं पर लड़का अगर 25% प्रिपरेशन करता है, 100% डिलीवर करके आता है, तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब आते हैं सवाल पे, मेरी बात अगर मैं कोशिश तो पूरी यही रहेगी मेरी कि मैं लड़की और लड़कों में फ़र्क ना करूं और दोनों को एक पहलू में और एक ही पलड़े पे उसे एक ही वज़न में देखूं कि ये दोनों जो है हमारे कुल का चिराग जिसे कहते हैं कि ये दोनों नाम रोशन कर सकते हैं, तो वो दोनों के अंदर वो कैपेबिलिटी डालने की कोशिश करूंगा विदाउट डूइंग एनी बायफर्केशन, कोई भी भेदभाव किए बगैर। हाँ, वो बात अलग है थोड़ी सेफ्टी और सिक्योरिटी, क्योंकि हमारा समाज थोड़ा वैसा है, तो गर्ल्स के लिए थोड़ा सिक्योर माहौल हमें ढूंढना होता है, तो उस वजह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था कि उसका इम्पैक्ट तो पड़ ही सकता है, लेकिन क्या करें, ये कोशिश करनी पड़ती है, एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि उनके बच्चे जो है वो सेफ रहें, तो कोशिश करूंगा कि उनके लिए हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करूं जो उसके लिए बेटर हो, लेकिन जो मेजर्स हैं वो शायद अभी वक्त लगेगा उसको ख़त्म होने में।
2: साकिब, आपने कॉन्फिडेंस की बात करी, आपने सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करी, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जब आप किसी को प्रेशराइज करते हो, चाहे वो सोसाइटल वे में हो या फिर मतलब चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर हो या वो घर का प्रेशर हो, वो कहीं ना कहीं उसके कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट जरूर करता
4: है। बिल्कुल।
2: अगर वो 100% तैयारी करके जाती है तो 20% 25% या 20% मतलब कम डिलीवर कर पाती है क्योंकि उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या किया जाए जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी हो, और इसके लिए हम अपने ग्रास रूट लेवल पर क्या कर सकते हैं? ये क्वेश्चन इनफैक्ट मेरा आप दोनों से ही है।
4: अगर मैं कहूँ तो मुझे तो लगता है कि सस्टेनेबल प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। गवर्नमेंट कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी और इस सस्टेनेबल प्लान में सबसे पहले तो गर्ल्स के जो एजुकेशन का है उसको प्रायोरिटी बना के उसको नज़दीक में स्कूल अवेलेबल करवाना चाहिए, या फिर अगर दूर में स्कूल है तो उसको फुल सिक्योर करवाना चाहिए। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर में बेटे और बेटी दोनों हैं, तो कोशिश ये करें कि हम अपनी बेटियों को समझाने से ज़्यादा अपने बेटों को समझाएं। उनको बोलें कि आप अपनी नज़र नीची करके रोड पे चल सकते हैं, अगर कोई लड़की चल रही है तो आप उसको रिस्पेक्ट दें, कोई लड़की अगर रास्ते में है आपकी मदद चाहती है तो आप उसको मदद करें। हम अपने बेटों को ज़्यादा समझाएं तो मुझे लगता है कि समाज में बड़ा चेंज आ सकता है। गवर्नमेंट कैन चेंज सो मेनी थिंग्स। गवर्नमेंट तो प्लान चला ही रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा लगाते हैं हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है, तो ये सब प्लान गवर्नमेंट जितना एफर्ट डाल रही है उसमें हम लोग भी हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारे मेजर्स हम ले सकते हैं।
1: बिल्कुल साकिब, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि लड़कों को हम समझा सकते हैं, लेकिन डर जो है अभी भी है लड़कियों के मन में, तो वो अपनी सेफ्टी इस तरह रख सकती हैं लाइक पेपर स्प्रे, या फिर उन्हें इस तरह उनके माइंडसेट को बना देना चाहिए कि ठीक है जो होगा हम देख लेंगे, तुम आगे बढ़ो, तो उनमें उनके मन में एक सेटिस्फेक्शन होगा इन फ्यूचर अगर कुछ हो भी जाता है। मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ लड़कियों को ये बात बोलनी चाहिए, मैं बोलती हूँ लड़कों को भी ये बात बोलनी चाहिए कि जो होगा हम देख लेंगे, जो होगा यही चीज लड़कियों को ही बोलनी चाहिए कि आप पूरा अपना 100% तो बिना डरे चलो, आप करो अपना काम, अपने ड्रीम जियो, जो होगा हम पीछे से सपोर्ट करेंगे आपको, क्योंकि हम कई बार किसी की मेंटेलिटी नहीं चेंज कर सकते। राइट
2: साक्षी, आपने मतलब जो पेपर स्प्रे की बात करी, मैं उस सिचुएशन और इस एनवायरमेंट को क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हमें पेपर स्प्रे की जरूरत ही ना पड़े।
4: बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उसी पे रोशनी डाल रहा था
1: कि आप अगर किसी भी सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लोग रहते हैं, ठीक है, आप सबको चेंज नहीं कर सकते हो, राइट, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि आप सेफ्टी लेके एक चल सकते हो।
2: हाँ, वही मैं कह रहा था कि देखिए आज भी हम सेफ्टी लेकर चलते हैं और हम हर चीज चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हम इस साइड पर आते हैं, लेकिन क्या मैंने लाइक बीइंग अ बॉय क्या मैं ये कभी कहता हूँ कि मैं पेपर स्प्रे लेकर चलूंगा? नहीं कहता हूँ, क्योंकि यो सिचुएशन आई ही नहीं है।
4: बिल्कुल नहीं।
2: तो हम सिचुएशन चेंज कर सकते हैं और उसके लिए जैसा साकिब ने बताया कि अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर जो हमारी डाइनिंग टेबल कॉन्वर्जेशन होती है जहां पर हम ये चीज देखते हैं, ये हमारी पेट्रियाकल सोसाइटी है, मर्दों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, बड़ा वो करना, पावरफुल दिखाना, स्ट्रांग दिखाना और ब्रेड विनर दिखाना कि भाई घर को यही चलाते हैं, तो इस चीज में छोटे से नीचे लेवल से धीरे से मतलब जैसा साकिब ने कहा कि अपने लड़कों को समझाएं कि किस तरह से हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर रिस्पेक्ट आ जाएगी तो वो पेपर स्प्रे की सिचुएशन ही नहीं आएगी।
4: ये एक सस्टेनेबल बात हुई, और जैसा कि एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे पेपर स्प्रे से सेल्फ डिफेंस की एक बात आती है, कई सारे गवर्नमेंट जो है सेल्फ डिफेंस लड़कियों को सिखाती है, और गवर्नमेंट प्लान नहीं करें आप, हम खुद भी इस बात का ख्याल रखते हुए, इस चीज़ को ख्याल रखते हुए ये कोशिश करें कि मैं अपनी लड़कियों को कैसे डिफेंस करना है। डिफेंस करना मतलब ये कि
1: This is what I'm saying.
4: तो ये सेल्फ डिफेंस में वो चीजें आ जाती हैं कि एक तो सिक्योरिटी वाले पर्पज में अगर हमको कहीं ऐसा दिखता है तो कोशिश करें कि हम ऐसी जगह से अपना कट लें, यानी अपना जो रास्ता है वो थोड़ा चेंज कर लें, या फिर सेल्फ डिफेंस में वो भी चीजें आ जाती है कि हम कोशिश करें कि सामने वाले को कम से कम नुकसान पहुंचा के हम अपने आप को बचा सकें।
2: एग्जैक्टली
4: ये चीजें
2: तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस टॉक में बहुत सारी चीजें निकल कर आई और ये चीजें जरूरी हैं हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, और मुझे भरोसा है कि श्रोताओं को ये

0: इसे सुनकर काफी बूस्टअप होगा, और जो आपके घर में लड़कियां हैं, बेटी हैं, बहनें हैं, उनको आप कॉन्फिडेंस दीजिए। सबसे बड़ी बात अभी जो उन्हें चाहिए वो चाहिए आपका सपोर्ट और कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखिए हुनर हम सब में है, अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है तो वो निखर कर आता है। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास यहाँ हमसे बात करने के लिए। तब तक आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। धन्यवाद।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800 11 66 66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के 1800-11666 पर संपर्क करें।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाएं। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की

0: जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
1: तो अभी चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: Hello, मेरे बेस्ट फ्रेंड टिंकू।
3: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
2: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
3: ओह, मुझे बुखार हो गया है।
2: क्या
3: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
2: नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
3: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूँ तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अब्बा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा या यूं कहें कि पिचक जाएगा या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओ, तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह आज के सुविचार से, जो हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। आपने लिखा है,
2: कुछ चीजें निकट आने पर बिना मांगे ही मिल जाती हैं, जैसे अग्नि की गर्माहट, बर्फ की शीतलता, फूलों की सुगंध। इसलिए ईश्वर से कुछ भी मत मांगिए,
3: बस निकटता बढ़ाइए। सब कुछ जो आपके लिए अच्छा है बिना मांगे ही आपको मिलने लगेगा।
2: जी, इस सुंदर विचार के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। हमारा पहला प्रश्न था,
3: श्रोताओ हमारा पहला प्रश्न था, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा?
2: श्रोताओ इसका सही उत्तर है, भारत वर्ष से आशय भरत के देश से है। भरत वो नाम है जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित हुआ था। वहाँ इसका अभिप्राय लोगों के एक समूह वैदिक समूह से है। बाद के साहित्य में भरत नाम विभिन्न महाराजाओं के लिए भरत नाम उल्लिखित हुआ। भरत नाम से कई राजा हुए, इसी नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा।
3: श्रोताओ हमारा दूसरा प्रश्न था, इमोजी की खोज किसने की थी और इस शब्द का यानी इमोजी शब्द का अर्थ क्या है?
2: तो इसका सही उत्तर है साथियों, इमोजी की खोज की थी शिगेटाका कुरिता ने, जो कि एक जापानी डिजाइनर हैं। जापानी भाषा में ई से तात्पर्य है चित्रात्मक अक्षर और मोजी से अभिप्राय है चरित्र। इस तरह इमोजी का मतलब हुआ चित्रात्मक अक्षर और चरित्र।
3: जी, चित्रात्मक अक्षर और चरित्र। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, एट चिन्ह का उपयोग ईमेल पर सबसे पहले किसने और कब किया?
2: तो इसका भी सही उत्तर जान लेते हैं साथियों, एट चिन्ह का उपयोग सबसे पहले अमेरिका के कंप्यूटर इंजीनियर रे टॉमिलसन ने सन 1971 में दुनिया का पहला ईमेल भेजते समय किया।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, गूगल का शाब्दिक अर्थ क्या है?
2: गूगल एक गणितीय शब्द है जिसका अर्थ है एक अंक के बाद 100।
3: साथियों और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था?
2: तो इसका सही उत्तर है साथियों, इंटरनेट का आविष्कार किया था दो अमेरिकी इंजीनियर विंटन सर्फ और रॉबर्ट काहन ने।
3: जी, और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताइए। आप हमें हमारे ईमेल के पते पर भी संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
3: श्रोताओ हमें आपके संदेश और उत्तरों का इंतजार रहेगा। तो अब प्रस्तुत है श्रोता संवाद। श्रोता संवाद के पांचवें संस्करण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि श्रोता संवाद के पिछले चार संस्करणों में आप हमारे साथ निरंतर बने रहे। आज एक बार फिर से श्रोता संवाद में आप सभी श्रोताओं के साथ संवाद करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर राजेंद्र पाल, जो CIET NCERT के मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर पाल, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्रोताओं की ओर से।
4: धन्यवाद अजीत जी, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद कि आप हमारे श्रोता संवाद कार्यक्रम को सुनते हैं। आशा है इस कार्यक्रम में दी जा रही जानकारियों से आप अवश्य लाभ उठा रहे होंगे।
3: तो डॉक्टर साहब, पिछले श्रोता संवाद के प्रत्युत्तर में हमें श्रोताओं के बहुत सारे पत्र ईमेल के द्वारा मिले हैं, तो क्यों ना पहले सुन लें कि क्या लिखा है हमारे श्रोताओं ने।
4: जी बिल्कुल, हम उनकी सुनेंगे तभी तो हमारे श्रोता हमारी सुनेंगे।
3: जी बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं श्रोताओं के पत्र जो हमें श्रोता संवाद के चौथे अंक के प्रत्युत्तर में मिले हैं।
4: जी,
3: तो डॉक्टर साहब पहला पत्र हमें मिला है योगेश ठाकुर जी का, करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं, नमस्कार प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी और अजीत जी, उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता संवाद का चौथा अंक बहुत ही ज्ञानवर्धक था। इस कार्यक्रम में PME विद्या और दीक्षा पोर्टल के बारे में जो जानकारी दी गई थी वह जानकारी अन्य किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती। आपका कार्यक्रम ऐसी ऐसी जानकारियों का भंडार है जिनका मिलना अन्य माध्यमों से असंभव सा लगता है। आपके कार्यक्रम में दीक्षा पोर्टल के बारे में जानकारी बड़े ही विस्तार पूर्वक दी गई, जो बहुत अच्छी थी। मुझे दीक्षा पोर्टल के बारे में पहले से ही जानकारी थी और इस जानकारी का श्रेय भी उमंग कार्यक्रम को ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
4: धन्यवाद योगेश जी, आपका पत्र पाकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार पत्र लिखते रहिए। आपसे निवेदन है, कृपया हमें बताएं कि श्रोता संवाद में आप शिक्षा से जुड़े और किन किन विषयों पर हमारी वार्ता सुनना पसंद करेंगे।
3: जी,
4: हमें आपके संदेश का इंतजार रहेगा।
3: जी डॉक्टर साहब, अगला पत्र हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। आप लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के अंतर्गत प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी से अजीत जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। पीएम ई विद्या के अंतर्गत दीक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त हुई। हम भी इस ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करेंगे। यह ऐप विद्यार्थियों के साथ साथ सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीक्षा ऐप पर महत्वपूर्ण जानकारी उमंग कार्यक्रम में सुनवाने के लिए प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी एवं अजीत जी का हम दिल से शुक्रिया प्रकट करते हैं। शिक्षाप्रद, मनोरंजक एवं जानकारियों से भरपूर उमंग कार्यक्रम सुनने के लिए हम उन श्रोता साथियों को भी प्रेरित करेंगे जो अभी तक इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को नहीं सुन पाए हैं।
4: सभी श्रोता बंधुओं को धन्यवाद, सभी अरोड़ा बंधुओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। हमारी आपसे अपेक्षा है कि कृपया श्रोता संवाद और उमंग कार्यक्रम सुनने के लिए अपने अन्य मित्रों को इसी तरह प्रोत्साहित करते रहें।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। डॉक्टर साहब, अगला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। संदेश भेजने वाले हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार धाकसे जी। आपने लिखा है, हमें दिनांक 5 मई 2025 दिन सोमवार का कार्यक्रम श्रोता संवाद बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर पाल द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी। इस वार्ता से पता चला कि शिक्षा के क्षेत्र में कितनी लाभकारी योजनाएं चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
4: संदेश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता संवाद में हम शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय की नई नई पहलों या प्रयासों के बारे में आप सबको सूचना देते हैं। हमारा आग्रह है कि आप इन पहलों की सूचना यथासंभव दूसरों को भी दें। यदि आप शिक्षक हैं तो आप स्थानीय विद्यालयों से भी संपर्क कर उन्हें भी इन पहलों की जानकारी दे सकते हैं। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते रहें।
3: अगला पत्र हमें मिला है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से। रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार जयजान, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी का। आप लिखते हैं, उमंग कार्यक्रमों से काफी दिनों से हम जुड़े हुए हैं और भिन्न भिन्न आकाशवाणी केंद्रों से उमंग कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये कार्यक्रम जो जानकारी से भरा हुआ होता है। 5 मई का कार्यक्रम श्रोता संवाद हमने उमंग के अंतर्गत सुना। जानकारी से भरा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। हमें प्रोफेसर पाल जी से मिली जानकारी बहुत अच्छी लगी। उमंग कार्यक्रम में जो सुनने वाले रेडियो श्रोता हैं उनको भी फोन पर बातचीत करके हमने कार्यक्रम सुनवाया। उमंग की पूरी टीम को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
4: अरे वाह, आपने तो रेडियो को टेलीफोन से भी जोड़ दिया है। इसके लिए आपको साधुवाद।
3: जी,
4: ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप उमंग कार्यक्रम को भिन्न भिन्न आकाशवाणी केंद्रों से भी सुनते हैं।
3: जी,
4: हमारे और भी कई श्रोता हैं जो एक ही दिन में अलग अलग प्रसारण केंद्रों से उमंग कार्यक्रम सुनते हैं। ये दर्शाता है कि उमंग कार्यक्रम सचमुच लोकप्रिय है। आपसे आग्रह है कि अपने परिजनों और मित्रों को भी उमंग कार्यक्रम सुनने के लिए प्रेरित करते रहें।
3: जी डॉक्टर साहब, अगला पत्र हमें मिला है आर्यनगर कोह का, भिलाई, छत्तीसगढ़ से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। आपने संदेश भेजते हुए कहा है, सचमुच में ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और जानकारी से भरा हुआ होता है। इसके बारे में समय समय पर हम अपनी प्रतिक्रियाओं से भी आपको अवगत कराते रहते हैं और भविष्य में भी इसी प्रकार से कराते रहेंगे। 5 मई का कार्यक्रम उमंग हमने सुना। जानकारी से भरा ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा। प्रोफेसर पाल द्वारा दी गई जानकारी भी हमें बहुत अच्छी लगी।
4: धन्यवाद। सभी संदेश भेजने वालों को हमारा आभार। आप सबसे अपेक्षा है कि इसी तरह से अपना संदेश भेजते रहें और जरूर बताएं कि हमसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं।
3: जी, आप सबका बहुत बहुत आभार श्रोताओं पत्रों और प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारी आपसे अपेक्षा है कि श्रोता संवाद कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिक्रिया अधिक से अधिक दें। तो डॉक्टर साहब, शुरू करते हैं आज की बातचीत।
4: बिल्कुल।
3: पिछले दिनों हमने चर्चा की थी दीक्षा पोर्टल की, जो पीएम ई विद्या के 6 तत्वों में से एक प्रमुख तत्व है। हमारे श्रोता अब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आज की हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
4: तो हमारी आज की चर्चा का विषय होगा स्वयं।
3: जी,
4: ये भी पीएम विद्या के तत्वों में से एक है।
3: लेकिन इससे पहले कि हम स्वयं पर चर्चा करें, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि एक बार फिर से हम क्यों ना अपने श्रोताओं को बता दें कि पीएम विद्या क्या है।
4: पीएम विद्या शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है जो डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देती है।
3: जी,
4: यह विशेष रूप से उन छात्रों की मदद करती है जिनकी शैक्षिक संसाधनों तक सीधी पहुंच नहीं है।
3: जी, तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं आज स्वयं की। स्वयं से क्या अभिप्राय है, दूसरे शब्दों में स्वयं क्या है?
4: जी, स्वयं की अगर वर्तनी देखी जाए तो ये हुई SWAYAM।
3: जी, SWAYAM,
4: जिसका पूरा अर्थ है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स।
3: जी,
4: यह भारत सरकार की एक शैक्षिक डिजिटल पहल है जिसका शुभारंभ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था।
3: जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो यदि स्वयं को हम हिंदी में कहना चाहें तो मुझे लगता है इसका अर्थ बनेगा युवा महत्वाकांक्षी मस्तिष्क के लिए सक्रिय शिक्षण हेतु वेब द्वारा अध्ययन।
4: जी, होगा जी, यही अर्थ बनेगा। वेब द्वारा अध्ययन करने का अर्थ है वेब पोर्टल के माध्यम से अध्ययन करना।
3: जी, बहुत अच्छा। तो हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि इस पहल या इनिशिएटिव यानी स्वयं का उद्देश्य क्या है।
4: जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तीन मुख्य सिद्धांत हैं, पहुंच यानी एक्सेस, समानता यानी इक्विटी
3: जी,
4: और गुणवत्ता यानी क्वालिटी।
3: जी,
4: पहुंच से तात्पर्य है सुनिश्चित करना कि पढ़ने की इच्छा रखने वाले हर विद्यार्थी तक शिक्षण सामग्री पहुंच सके।
3: जी, डॉक्टर साहब, आपने बताया राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है समानता, इसके बारे में भी कुछ कहें।
4: जी, समानता का अर्थ है भारत के किसी भी शिक्षार्थी तक शैक्षिक सामग्री बिना भेदभाव के पहुँच सके, यानी शैक्षिक सामग्री प्राप्त करने के सबके पास समान अवसर हों। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का तीसरा प्रमुख सिद्धांत है गुणवत्ता।
3: जी डॉक्टर साहब, गुणवत्ता का आशय तो स्पष्ट है, विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री प्रदान करना।
4: जी हाँ, स्वयं का प्रमुख उद्देश्य ऐसे लोगों तक शैक्षिक सामग्री पहुंचाना है जो भौगोलिक, आर्थिक या अन्य किन्हीं और परिस्थितियों के कारण शैक्षिक डिजिटल क्रांति से वंचित या अछूते रह गए हैं।
3: जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे दीक्षा एक पोर्टल है, क्या वैसे ही स्वयं भी एक वेब पोर्टल है?
4: जी जी, दीक्षा की तरह ही स्वयं भी एक ऑनलाइन लर्निंग वेब पोर्टल है। यह कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह सामग्री किसी भी समय, किसी भी स्थान पर और किसी के लिए भी उपलब्ध है।
3: वाह, क्या बात है, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर और किसी के लिए भी उपलब्ध है। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। हमारे श्रोता अब ये जानना चाहेंगे कि स्वयं पोर्टल पर शैक्षिक सामग्री कौन प्रदान करता है।
4: जी अजीत जी, स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा विकसित की जाती है। यह सामग्री परस्पर संवादात्मक या इंटरेक्टिव है और सभी शिक्षार्थियों के लिए निशुल्क उपलब्ध है।
3: जी, तो डॉक्टर साहब, पिछली बार हमने दीक्षा पोर्टल पर NCERT की भूमिका और योगदान की भी चर्चा की थी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि स्वयं में NCERT की क्या भूमिका है।
4: मैं सभी श्रोताओं को विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि NCERT कक्षा 9 से 12 तक के स्वयं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित, प्रकाशित और प्रसारित कर रही है। NCERT इन कक्षाओं के लिए 11 विषयों में 28 पाठ्यक्रम प्रस्तुत करती है।
3: 11 विषयों में 28 पाठ्यक्रम, तो डॉक्टर साहब, ये पाठ्यक्रम कब उपलब्ध होते हैं?
4: ये पाठ्यक्रम वैसे तो हमेशा उपलब्ध होते हैं, परंतु इनमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 2 चक्र होते हैं।
3: जी,
4: पहला चक्र यानी कि सत्र 1 अप्रैल से सितंबर तक का है और दूसरा सेशन अक्टूबर से मार्च तक का होता है।
3: जी,
4: मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विगत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष सितंबर 2024 तक उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5 लाख शिक्षार्थी स्वयं पोर्टल से लाभान्वित हो चुके हैं।
3: जी डॉक्टर साहब, अभी हमने जाना दीक्षा के पाठ्यक्रमों के बारे में, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे इसकी सामग्री के बारे में। तो हमारा प्रश्न होगा कि स्वयं पोर्टल में किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध होती है।
4: जैसा कि ये शिक्षा से संबंधित पोर्टल है, इस पर शैक्षिक ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, सिमुलेशन और वर्चुअल लैब जैसी समृद्ध शैक्षिक सामग्री उपलब्ध है।
3: जी।
4: साथ ही यदि कोई शिक्षार्थी पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछना चाहे तो उन्हें उनके प्रश्नों का त्वरित समाधान प्रदान किया जाता है। पूछे गए प्रश्नों पर स्वयं पोर्टल के चर्चा मंच पर भी विस्तार से चर्चा की जाती है।
3: जी डॉक्टर साहब, स्वयं पर जो पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, क्या उनकी कोई विशेष संरचना होती है?
4: बिल्कुल बिल्कुल, स्वयं के हर पाठ्यक्रम को 4 हिस्सों में तैयार किया जाता है।
3: जी।
4: जिन्हें 4 क्वाड्रेंट्स कहा जाता है।
3: जी, 4 क्वाड्रेंट्स।
4: हाँ, वीडियो लेक्चर इसका पहला क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में विशेष विषय विशेषज्ञों द्वारा रिकॉर्ड किए गए ऑडियो विजुअल कार्यक्रम होते हैं। यह शिक्षार्थियों को कक्षा जैसा अनुभव प्रदान करते हैं और वो भी कहीं भी और कभी भी।
3: जी बड़ी अच्छी बात, वो भी कहीं भी और कभी भी। इसके दूसरे क्वाड्रेंट के बारे में कुछ बताएं।
4: दूसरा क्वाड्रेंट पाठ्य सामग्री यानी रीडिंग मटेरियल है। इस खंड में संपूर्ण पाठ्य सामग्री, प्रस्तुतियां, पीडीएफ नोट्स और अतिरिक्त संदर्भ होते हैं।
3: जी।
4: यह विद्यार्थियों के स्व अध्ययन को सशक्त बनाते हैं।
3: जी, और इसका तीसरा क्वाड्रेंट?
4: तीसरा क्वाड्रेंट सेल्फ असेसमेंट यानी स्व मूल्यांकन होता है। इसमें विद्यार्थियों के लिए मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी प्रश्न, पहेलियां, शंकाओं पर आधारित अभ्यास और अन्य मूल्यांकन गतिविधियां होती हैं, जिनसे वे अपने ज्ञान का मूल्यांकन कर सकते हैं।
3: जी, तो ये हुआ तीसरा क्वाड्रेंट। अब चौथे क्वाड्रेंट के बारे में भी कुछ बताएं।
4: चौथा क्वाड्रेंट चर्चा मंच और संवाद यानी डिस्कशन फोरम है।
3: जी।
4: यह खंड विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, शिक्षकों से उत्तर पाने और अन्य शिक्षार्थियों के साथ संवाद स्थापित करने की सुविधा देता है। यह सहयोगात्मक यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रोत्साहित करता है।
3: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली विवरण दिया आपने। इससे यह पता चलता है कि स्वयं केवल पाठ्य सामग्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक समग्र डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इन चारों हिस्सों से स्वयं एक समग्र और सहभागी डिजिटल शिक्षण मंच बन जाता है।
4: बिल्कुल अजीत जी, यही स्वयं की विशेषता है। यह एक तरफा शिक्षण नहीं बल्कि सक्रिय, सहभागी और मूल्यांकन समर्थ शिक्षा है। इसके चारों क्वाड्रेंट मिलकर एक संपूर्ण डिजिटल कक्षा का निर्माण करते हैं।
3: जी, तो डॉक्टर साहब, इसका अर्थ ये है कि स्वयं पोर्टल पर स्व आकलन भी संभव है, जैसा हमने अभी अभी सुना। यानी क्या प्रतिभागी इस पोर्टल पर अपने अर्जित ज्ञान का स्वयं आकलन कर सकता है?
4: जी बिल्कुल, यही तो इस पोर्टल की सबसे बड़ी विशेषता है। स्वयं पोर्टल का नाम ही स्वयं है, यानी शिक्षार्थी स्वयं अध्ययन कर सकता है और स्वयं अपना मूल्यांकन भी कर सकता है।
3: जी, मेरे मन में एक और प्रश्न आ रहा है जो मैं श्रोताओं की ओर से आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। मेरा प्रश्न है, स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रम में कौन भाग ले सकता है?
4: इस पाठ्यक्रम में स्कूली छात्र, अभिभावक, सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षक तथा भारत के केंद्रीय और राज्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थी भी अपनी तैयारी के लिए इसमें भाग ले सकते हैं।
3: बहुत ही सुंदर, स्वयं पोर्टल सच में बहुत ही उपयोगी है। भेंट वार्ता के अंत में मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न श्रोताओं की ओर से। तो प्रश्न है कि स्वयं के पाठ्यक्रमों में यदि कोई भाग लेना चाहे तो कैसे भाग ले?
4: वैसे तो श्रोताओं के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण ही होते हैं।
3: जी,
4: तो इसमें भाग लेने के लिए शिक्षार्थियों को बहुत ही सामान्य और सुगम चरणों से गुजरना होगा।
3: जी,
4: पहला चरण CIET NCERT पोर्टल पर www.cit.nic.in या www.ncert.nic.in पर जाएं सर्च विकल्प के द्वारा पाठ्यक्रम तक पहुँचें।
3: जी, और दूसरा चरण क्या है?
4: दूसरा चरण है कि आप www.swayam.gov.in पर अपना पंजीकरण कराएं और विषय वस्तु का अध्ययन करें और उससे जुड़ी हुई सभी गतिविधियां ऑनलाइन पूर्ण करें और फिर अंतिम आकलन में भाग लें। सफल होने पर प्रमाण पत्र भी प्राप्त करें।
3: जी, तो क्या पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कुछ न्यूनतम अंक अर्जित करने होंगे?
4: जी हाँ, प्रारंभिक आकलन में जिन्होंने 50% अंक प्राप्त किए और योगात्मक यानी समेटिव आकलन में 60% या अधिक अंक प्राप्त किए
3: जी,
4: उन्हें पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।
3: जी,
4: और जिन्होंने प्रारंभिक आकलन में 50% अंक नहीं पाए उन्हें पाठ्यक्रम प्रतिभागिता प्रमाण पत्र और जिन्होंने योगात्मक आकलन में 60% अंक प्राप्त नहीं किए उन्हें पाठ्यक्रम प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाता है।
3: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए।
4: सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या हम श्रोताओं को अपना कोई नया कार्यक्रम सुना रहे हैं?
3: जी हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो आइए सुनते हैं कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: शांत
1: शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
3: हाँ हाँ महाराज,
1: महाराज
3: बताइए।
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर
3: हैं। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
4: जी महाराज, पूछिए। क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
5: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
6: जी महाराज, बहुत
7: महाराज की जय हो।
8: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
3: महाराज ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
3: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
3: धन्यवाद महाराज।
0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
3: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
9: महाराज की जय।
2: महाराज की जय।
1: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
3: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज। यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ ले महाराज।
1: कहिए, मेरी आज्ञा है। आप सभी निसंकोच कहिए।
3: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से कराई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
1: क्या? और कोई शंका?
3: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है। बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
1: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
2: महाराज की जय। महाराज की
9: जय।
2: महाराज की
9: जय।
10: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे, कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
11: तो आशा है कि हमारे श्रोताओं को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
12: उमंग उमंग उमंग उमंग।
13: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूं डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा। सुनो
4: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
5: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आर के शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
1: इस मौसम में सबसे पहले ये है कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख कर चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम खराब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है,
1: काम बहुत जरूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
0: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
1: उनको यही सिर पर कपड़ा रखना है हर समय
0: जी।
1: दूसरा ये कि कम से कम जो है मतलब ऐसे समय यदि देखें बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप

0: दो घंटे का टाइम एक बजे से लेकर तीन बजे तक, उससे थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट।
1: और
0: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को भी देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, पैर में जो है सब ज़्यादा परेशानी आती है।
1: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
0: उसमें आराम करें,
1: उसमें आराम
0: आगे जगह मिल जाए। अपना लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है, कहीं भी किसी तरह की जगह है उनको वहाँ पर अपना।
1: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
0: खास तौर से जो है आपको एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
1: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बीमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं, हीट स्ट्रोक हो जाता है,
0: बुखार आ जाता है,
1: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
0: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता है, लेकिन बाहर कहीं आना जाना रखते हैं औरतें हैं बच्चों को लेकर, कहीं रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं और धूप में गर्मी में है, तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांसेस है।
1: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
0: लूज मोशन भी है,
1: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
0: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी, तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ, और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है लूज मोशन के लिए कोई टैबलेट वगैरह या लिक्विड में दे सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
0: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, ORS तो लगभग गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है कोई, और दवा मिल जाए आप, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ORS?
0: ORS एक जीवन रक्षक घोल है
1: जी,
0: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है, ये किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आप तो देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पर कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
1: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
0: तब भी उसको ले सकते हैं,
1: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
0: दिनचर्या तो यही कि सुबह जल्दी उठे
1: जी,
0: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें लेकिन व्यायाम सबसे पहले है, ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा, कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज़ साधन ऐसी है जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जो कार्यक्रम चल रहा सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए, जो भी अच्छे आपके जो कहीं पर इस तरह की क्लिप मिलती है तो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया जाए।
1: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे?
0: गर्मी से बचें थोड़ा सा जितना हो सकता है, ये नहीं कि काम बंद कर दें, बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जरूर लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेकर चलें कुछ, और घर से एक बोतल पानी भी लेकर चलें इसमें।
1: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपाली। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। और इसी बीच हमारे से जुड़ी हुई है एक बहुत ही खास हस्ती, जिनका परिचय हम आपसे कराएंगे। परिचय कराने से पहले हम बता देते हैं कि उनको रेडियो की दुनिया का अच्छा खासा अनुभव है, तो मैं अपने श्रोताओं से कहूंगी कि कहीं ना जाएं, उन्हें सुने। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गीतिका उनियाल जी, जो की FM रेनबो पर बतौर रेडियो जॉकी अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपको कैसा लग रहा है?
2: सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो शारदा 90.8 FM, इसके माध्यम से आज मैं आप सभी के बीच सम्मिलित हूँ, यानी कि रेडियो की इस दुनिया से मेरा संबंध और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि आज के विशेष दिन पर आपने मुझे आमंत्रित किया और आज मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है मेरे लिए, और बहुत ही सुहाना सफर रहा है अभी तक रेडियो की दुनिया में, और उम्मीद करती हूँ कि आगे चलकर भी हम कुछ नया देंगे। हमारा हमेशा प्रयास यही रहना चाहिए।
1: जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। आज हम बात कर रहे हैं रेडियो के बारे में, और रेडियो को जोड़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जैसा कि हमारी थीम भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रेडियो एम्पावरिंग वॉइस ऑफ कम्युनिटी। तो मैम, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या AI कम्युनिटी की आवाज को और सशक्त बना सकता है?
2: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, समुदाय की बात करते हैं, तो उसमें कम्युनिटी रेडियो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और आज युग में जब हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, और ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हर जगह है, तो रेडियो की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कहीं ना कहीं और सशक्त करेगा। सशक्त कहने का मतलब ये है कि हम और भी ज्यादा इम्पावर हो जाएंगे। जहां पहले हम स्ट्रगल किया करते थे कि हम उचित सामग्री इकट्ठा करें और फिर अपनी स्क्रिप्ट बनाएं, स्क्रिप्ट बनाने के बाद फिर प्रॉपर प्रोग्रामिंग करें, फिर उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें या फिर लाइव जाकर अपने प्रोग्राम्स को दें, लेकिन अब चुटकियों में, क्षण भर में प्रोग्रामिंग आसानी से की जा सकेगी, क्योंकि हमारे पास AI के उपकरण यानी कि टूल्स मौजूद होंगे, जिसकी मदद से हम कुछ ही समय के अंदर अपने काम को कर पाएंगे।
1: हाँ, तो मैम, हम मान सकते हैं कि AI समुदाय की आवाज को और सशक्त बनाएगा और समुदाय के बीच में जाकर और बेहतर प्रोग्रामिंग करेगा। ग्रामीण लोगों से जुड़े मुद्दे, महिलाओं से जुड़े मुद्दे, बच्चों से जुड़े मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे, सब पर AI बेहतर कंटेंट के साथ प्रोग्राम बना रहा है और लोगों के बीच में जाकर एक लोकप्रिय भूमिका में स्थित भी है। तो मैम, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से रेडियो के कंटेंट प्रोडक्शन में सबसे बड़ा बदलाव हमें क्या देखने को मिलेगा?
2: देखिए, अगर कंटेंट की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हम अगर अतीत के पन्नों को झांक कर देखिए, तो हमेशा से ही हमने रेडियो के माध्यम से कंटेंट पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। कंटेंट का अर्थ यहाँ पर है हमारी जो आम जनता है, जिनके लिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उन्हीं की बात उन्हीं तक पहुंचानी है, जो मुद्दे हैं उन तक पहुंचाने हैं। तो प्रोग्राम के कंटेंट में इस तरह से फर्क पड़ेगा कि अब हम AI टूल्स के माध्यम से या AI के संपर्क में आने के बाद ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से क्षेत्र में, यानी कि हमारे समुदाय के भी किस क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है। जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो हम उन लोगों तक आसानी से पहुंच पाएंगे जो उस परेशानी से ग्रसित हैं या जो चाहते हैं कि उनकी आवाज आम आवाज बन जाए और सब तक बात पहुंचे, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगी।
1: जी गीतिका जी, आपने हमारे लिसनर्स को बहुत जरूरी और बहुत ही बेहतर जानकारी दी है। जैसा कि आप FM रेनबो पर इस समय अपनी सेवाएं दे रही हैं, समुदाय के लोगों से जुड़ रही हैं, अनेक कार्यक्रम बना रही हैं, लोक संस्कृति, रीति रिवाज, देश विदेश से संबंधित कार्यक्रम लोग सुन रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, और आपकी आवाज एक सशक्त माध्यम है। मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से हम किसी भी रेडियो प्रोग्राम की स्क्रिप्ट लिखते समय मानवीय संवेदनाओं को समझते हैं, क्या AI भी जब कोई स्क्रिप्ट लिखता है तो वो मानवीय संवेदनाओं को समझ पाता है?
2: जी, यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, AI अगर हम संवेदनाओं की बात कर रहे हैं, तो AI हमें सशक्त सिर्फ डेटा देकर बनाएगा।
1: जी,
2: हमारी पूरी स्क्रिप्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि भावनात्मकता की अगर बात की जाए तो मनुष्य में है। जब मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल टूल्स बना रहा है जो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, ना कि उसको रिप्लेस करेंगे। आपने कभी क्या किसी को सुना है कि उसने अपना ही कॉम्पिटिटर तैयार कर दिया? ऐसा कभी होता नहीं है, और कभी होगा भी नहीं। तो AI सिर्फ मदद करने वाला एक ऐसा टूल है जो हमारे समय को कम करेगा, यानी कि जितना समय हम पहले से लगाते आ रहे हैं किसी काम को करने में उसे कम कर देगा। लेकिन जब भावनाओं की बात होती है, ह्यूमन वैल्यूज की बात होती है, तो मनुष्य के आगे कोई और नहीं, मनुष्य अपने आप में एक ही है और एक ही रहेगा, और उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो वैल्यू सिस्टम है वही रहेंगी जो मनुष्य के पास है। मनुष्य कोई रोबोट नहीं है, मनुष्य एक समय पर एक काम कर पाता है, चीजों का आकलन कर पाता है, सोच पाता है, समझ पाता है, रो पाता है, हंस पाता है। आपने अगर अपने बच्चे के लिए घर पर किसी रोबोट को खरीदा है जो सिर्फ चलता है, नाचता है, गाता है, क्या कभी आपने उसको रोते हुए सुना है? कभी क्या आपने उसको हंसते हुए सुना है? वो तो आप ही के द्वारा चाबी घुमाने पर आपकी भाषा बोलता है, लेकिन आप नहीं बनता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मैम। जैसा कि AI इन दिनों कंटेंट फॉर्मेशन को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम सामुदायिक रेडियो हैं, सुनो शारदा 90.8 FM। हम काम ही समुदाय के लिए करते हैं, लोकल वॉइस को आगे लेकर जाना। हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन मुद्दों पर सरकार गंभीरता से बात करना चाहती है। हम समुदाय की आवाज बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी बीच मेरे मन में एक सवाल आता है कि AI जहां हर तरीके के कंटेंट का निर्माण कर रहा है, क्या लोकल भाषाओं में भी AI अपना कमांड कर पाएगा? कहीं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं ब्रजभाषी बोली जाती है। अगर हमें अपने समुदाय से जुड़ना है तो हम लोकल लैंग्वेज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या AI लोकल लैंग्वेज पर कमांड कर पाएगा या कर पा रहा है, और वो कितना समुदाय तक पहुंच पा रहा है, ये आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं।
2: जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब यहाँ पर बात क्षेत्रीय भाषाओं की हो रही है, जैसा कि आपने स्वयं से प्रश्न किया है इस बात में कि हम कम्युनिटीज के लिए काम करते हैं, और कम्युनिटी यानी कि अलग अलग समुदाय, अलग अलग राज्यों के समुदाय, अलग अलग गांवों के समुदाय स्टेशंस हो गए, तो वहां पर क्षेत्रीयता बदलेगी, क्षेत्रीयता बदलेगी तो भाषा बदलेगी, भाषा बदलेगी तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है जब हम अपने जो हमारा प्रदेश है, जो हमारी कम्युनिटी है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, अगर उनकी भाषा में बात नहीं करेंगे ना तो हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो कनेक्शन के लिए जरूरी है उस भाषा का इस्तेमाल करना अपनी प्रोग्रामिंग में, अपने कंटेंट में, जिससे कि समुदाय है वो हमसे जुड़े। अगर मैं किसी समुदाय को संबोधित कर रही हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उनकी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ तो शायद मैं उन तक पहुंच नहीं पाऊंगी। AI निश्चित रूप से यहाँ मददगार होगा। AI टूल्स का इस्तेमाल कर हम किसी और भाषा में, मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंटेंट ऐसा है जो किसी और भाषा में है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कंटेंट है ना, ये मेरे समुदाय के लोगों के बड़ा काम आने वाला है, तो AI टूल्स को यूज कर उसका इस्तेमाल कर मैं उस भाषा का अनुवाद करवा सकती हूँ। क्षण भर में मेरे पास अनुवाद आ जाएगा, और क्योंकि मैं जानकार हूँ, मैं समुदाय से अपना संबंध रखती हूँ और समुदाय के लोगों को जानती हूँ, उनकी भाषा को जानती हूँ, और मैं फिर उसको अनुदित कर अपनी भाषा में उन तक पहुँचा सकती हूँ।
1: हाँ, तो हम मान सकते हैं कि लोकल भाषाओं में AI अच्छा कंटेंट बना सकता है।
2: जी
1: मैम, आप हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं, और हम चाहते भी हैं कि हमारे समुदाय के लोग जमीनी स्तर पर आपसे जुड़े। मेरा अगला सवाल आपसे है कि कम्युनिटी रेडियो के पास बहुत सीमित संसाधन होते हैं, सीमित संसाधनों में कम्युनिटी रेडियो को रन करना होता है। हम टीम मेंबर्स समुदाय के बीच में जाकर समुदाय की आवाज बनना चाहते हैं, ऐसे में AI की तकनीक को हम किस तरीके से अपना सकते हैं? क्या इसके लिए किसी ट्रेनिंग का जरूरत है, या हम समुदाय के लोगों के बीच में जाकर कुछ अच्छी स्क्रिप्ट AI की से बनाकर जो कि लोकल डायलेक्ट में हो उनके बीच पहुंचा सकते हैं? इस बारे में आप मुझे थोड़ा
2: देखिए, जब आपने कहा बताया कि आपको अपने समुदाय से जुड़ना है
1: जी,
2: तो मुझे लगता है कि आधी आत्मीयता तो आपने वहीं पूरी कर ली, जब समुदाय में यानी कि समुदाय में रहने वाले लोगों से आप जाकर मिले, आपने उनसे वन टू वन टॉक करी, तो आपने कहीं ना कहीं उनसे आत्मीयता वहीं स्थापित कर रही है। AI उनकी मनोस्थिति नहीं जानता है, AI आपको मदद करेगा, टूल्स मदद करेंगे कि उस क्षेत्र में, उस राज्य में क्या क्या परेशानियां हैं। आपके पास हो सकता है सवालों की एक फहरिस्त जरूर बन जाए, लेकिन सच में वो सवाल या वो मुद्दे उस समुदाय में हैं भी, या उस समुदाय को संबोधित करने वाले हैं भी या नहीं है, वो आप समुदाय से बात करके पता करेंगे। तो जो भी आप AI की मदद से सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं उसका क्रॉस चेक जरूर कीजिए। पूरी तरह से किसी भी उपकरण पर अपने आप को निर्भर कर देना ये गलत होगा। हाँ। आज के युग में जब व्यक्ति व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता, तो आप किसी उपकरण पर विश्वास कर फिर से ऐसे कैसे एक रेडियो प्रोग्राम बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं जो सीधा जुड़ा हुआ है आम जनमानस से।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। जैसा कि हम कोई भी रेडियो कार्यक्रम बनाते हैं समुदाय के लिए, तो हम काफी रिसर्च करते हैं, हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कुछ रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, समुदाय के बीच में जाकर लोगों की बात सुनकर हम स्क्रिप्टिंग करते हैं कि लोगों की असल मुद्दे क्या है जो रेडियो के माध्यम से जाने चाहिए। लेकिन आजकल बहुत तेजी के साथ स्क्रिप्ट तैयार कर ली जाती है। क्या हमारे प्रोग्रामों की जो क्रिएटिविटी है उस पर AI का बहुत गहरा प्रभाव पड़ गया है, या आने वाले समय में AI ही स्क्रिप्ट लिखेगा तो फिर रिसर्च करके प्रोग्राम कैसे बनेंगे? आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें।
2: ये प्रश्न भी आपका बहुत बहुत अच्छा है। AI स्क्रिप्ट, मैंने फिर कहा कि AI अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा जो एकदम आर्टिफिशियल है, वो उतनी ही सामग्री आपको देगा जितना उसके परिप्रेक्ष्य में आती है। मैं ये कहती हूँ कि जो दिमाग ईश्वर ने इंसान को दिया है वो शायद इंसान भी मशीन को नहीं दे सकता।
1: जी बिल्कुल,
2: है ना। तो जब हम कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं तो हम उसके कहते हैं ना कि हम किसी चीज के नकारात्मक और सकारात्मक पहलू दोनों को लेकर आप जब स्क्रिप्ट बना रहे होते हैं उसके बाद रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद आपको लगता है ये प्रश्न यहाँ पर ठीक नहीं लगेगा। सिर्फ ये मानव जाति के पास ही इस तरीके के गुण मौजूद है कि उसके पास ये शक्ति है कि वो अच्छे और बुरे में से अच्छे को अपने पास रखता है और बुरे को निकाल देता है। AI आपकी मदद कर सकता है, आपको स्क्रिप्ट दे सकता है, लेकिन फिर आपको पुनः निर्माण अपनी स्क्रिप्ट का, अपने प्रोग्राम का खुद करना होगा। ये मान लीजिए कि आपने अपने किसी साथी से हेल्प मांगी कि मेरी मदद कर दो क्या।
1: बिल्कुल,
2: उसने मदद की, पर आपको पूर्ण रूप से भी अपने साथी पर निर्भर नहीं होना है। उसने सिर्फ मदद की है
1: जी,
2: वो आप नहीं है। जिस तरह से दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में एक है, आप मुझ जैसी नहीं और मैं आप जैसी नहीं, तो भला फिर मुझ जैसा AI कैसे हो सकता है।
1: बिल्कुल,
2: तो कहते हैं ना कि मेरा क्लोन कोई भी नहीं अगर सही मायने में देखा जाए।
1: हाँ, सब अपने आप में यूनिक है,
2: यूनिक है। तो क्योंकि मुझ जैसा कोई नहीं तो मशीन मेरे जैसी कैसे हो सकती है।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि मशीन मेरे जैसी नहीं हो सकती, इसलिए उस पर हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते।
1: जी मैम, आपने बेहद अच्छी बात कही कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है और कोई किसी का क्लोन नहीं बन सकता है। मैम, हम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, हम समुदाय की बात करते हैं, ऐसे में मेरे मन में एक सवाल आता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो सरकार तक जानी चाहिए, तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या AI की मदद से हम ग्रामीण स्तर की कहानियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा सकते हैं?
2: देखिए, राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने के लिए आपको अब, जैसा कि आज मैं सिर्फ AI नहीं कहूंगी यहाँ पर, आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए तो मुझे लगता है कि शायद आज सोशल मीडिया ही काफी है।
1: बिल्कुल,
2: कि आपने आज किसी मुद्दे पर बात करी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और उसके बाद जिस तरह से वो वायरल होता है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं वो देश का मुद्दा बन जाता है। और यही कारण है कि शायद मन की बात जैसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए हुए हैं कि जो देश के मुद्दे हैं वो उन तक पहुंचे, और जब वो मुद्दे उन तक पहुंचते हैं पत्रों के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से, तो वो खुद उन मुद्दों को एड्रेस करते हैं बाकायदा रेडियो पर। तो इससे बड़ी और कुछ बात नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमें आत्मिक बने रहना है, एक दूसरे से बात करते रहना है, और निश्चित रूप से हमारी बात पहुंचेगी, जन जन तक पहुंचेगी, घर घर तक पहुंचेगी, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं।
1: जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि मानवीय संवेदनाएं और भावनाएं बेहद जरूरी हैं, जो AI उस तरीके से नहीं रख सकता जिस तरीके से हम रखते हैं। तो मैम, मेरा अगला सवाल इसी विषय पर है, क्या AI के कारण रेडियो में मानवीय संवेदनाएं और भावनाओं की कमी देखने को मिलेगी? क्या इस वजह से श्रोताओं का जुड़ाव हमसे कम होगा? अगर हम AI यूज करें तो हम किस हद तक यूज करें कि हमारे श्रोता हमसे जुड़े रहें?
2: जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं इस पर यही कहूंगी कि AI यूज कौन कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, जब हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, ट्रांसमिशन की, पैकेजिंग की, तब मैं कहती हूँ कि हम AI का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं AI हमारा काम थोड़ा कम कर देगा कि हमें प्रोग्राम को पैकेज करना है। आप और मैं ये साक्षात्कार कर रहे हैं AI की मदद से, आने वाले समय में आपने जो बात की और आपने बीच में मान लीजिए कोई गाना लगाना है, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इस परिप्रेक्ष्य में मैं कौन सा गाना लगाऊं। AI टूल का इस्तेमाल कर तुरंत आपके लिए एक गाने को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और देखिए, जो समय आप आधा घंटा लगाते हैं उस गाने को ढूंढने में, AI टूल की मदद से आपने उस गाने को ढूंढ कर
1: कुछ सेकंड्स में ढूंढ कर लगा दिया।
2: तो कहने का अर्थ यह कि आपकी प्रोग्रामिंग पैकेजिंग के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल बेहतरीन है, लेकिन फिर दोबारा से मैं यही कहना चाहूंगी बार बार कि जब मानवीय मुद्दों की बात आती है, मानवता की बात आती है, तो दुनिया में हम जैसा कोई नहीं, यानी कि मनुष्य जैसा कोई

0: नहीं है। अब ये निर्भर करता है कि जो संचालन कर रहा है कार्यक्रम का वो कितना इन्फॉर्म्ड है, वो अपने कार्य के प्रति अपनी रेडियो प्रोग्रामिंग के लिए कितना ज्यादा सजग है, क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है वो ये चाहता है कि मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो कुछ भी कहूँ ना वो सब कुछ विश्वसनीय हो,
1: क्रेडिबिलिटी बहुत
0: जरूरी है। तो वो AI पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहेगा, वो जो भी सामग्री तैयार कर रहा है, जो भी स्क्रिप्टिंग कर रहा है, वो सिर्फ AI की मदद से अपनी स्क्रिप्टिंग नहीं करेगा, वो किताबें ढूंढेगा, वो अखबार ढूंढेगा, वो रिसर्च पेपर्स देखेगा, उसके बाद ही संकलन करेगा, संग्रहण करेगा और अपनी स्क्रिप्ट तैयार करेगा। हाँ, AI की मदद ले सकता है पर पूर्ण रूप से वो AI पर निर्भर नहीं करेगा। जो लोग AI पर पूर्ण रूप से निर्भर रहेंगे, निश्चित रूप से उनके प्रोग्रामिंग में, उनके कार्यक्रमों में आपको कहीं ना कहीं अलगाव महसूस होगा, आपको ये महसूस होने लगेगा कि ये मेरी बात नहीं कही जा।
1: तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे श्रोता उतना नहीं जुड़ पाएंगे जितना कि उस प्रोग्राम से जुड़ पाते हैं जो हम खुद रिसर्च करके, मेहनत करके, समुदाय के बीच में जाकर उनकी संवेदनाओं को महसूस कर बनाते हैं।
0: जी, अब देखिए, माना आप और मैं यहाँ पर एक साक्षात्कार कर रहे हैं और आपको मेरी जिंदगी की वो पहलू पता है जो शायद किसी को नहीं पता, तो बताइए कि आत्मीयता इस बात से ज्यादा होगी कि आपने उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर किया रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से, या फिर आपने AI के माध्यम से मेरे बारे में ढूंढ कर या उसके द्वारा एक स्क्रिप्ट बनाकर मुझसे सवाल पूछ लिए।
1: जो मुझे आपके बारे में जानकारी है, जो आत्मीय जानकारी है, उस पर अगर मैं अपने श्रोताओं को जानकारी दूंगी तो मेरे श्रोता ज्यादा जुड़ेंगे आपसे।
0: जी जी, तो यही फर्क रहने वाला है कि जो लोग पूर्ण रूप से AI पर निर्भर रहेंगे वो कहीं ना कहीं उस मानवीय पहलू को भूल जाएंगे।
1: जी,
0: वो उसको उजागर ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो लोग जो काम करेंगे, जो करते आ रहे हैं, निश्चित रूप से वो ज्यादा जुड़ेंगे अपने लोगों तक।
1: अच्छा मैम, कहते हैं कि रेडियो दिल की आवाज़ है, रेडियो पर जब कोई गाना बजता है तो वो हमारे दिल तक पहुंचता है, क्या मशीन दिल की आवाज़ सुन सकती है? मशीन से मेरा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है।
0: जी, सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। जब ईश्वर ने ये दिल सिर्फ इंसान को दिया है, मशीन को नहीं, तो भला मशीन हमारे दिल की धड़कन कैसे सुन पाएगी? मैं फिर से कहूंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी बार बार बात हो रही है, ये मानव की ही खोज है। भगवान ईश्वर ने अगर इंसान को बनाया है तो इंसान ने मशीन को बनाया है। जिस तरह से ईश्वर सर्वोपरि है, उसी प्रकार मानव सर्वोपरि है मशीन के लिए। मशीन को भी ऑपरेट करना पड़ेगा, मशीन को भी चलाना पड़ेगा, मशीन को भी कमांड देना पड़ेगा, तो वो हम ही तो देंगे ना। तो जब हम ही देंगे तो हम क्यों सिर्फ मशीन लर्निंग पर, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से? मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को सिर्फ हमें इस्तेमाल करना है, प्रयोग में लाना है, लेकिन पूर्ण रूप से निर्भर।
1: तो मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहूंगी कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज तो करना है, लेकिन हमें पूरी तरीके से उस पर डिपेंड नहीं रहना। मैम, आजकल एक चीज बहुत सुनने में आ रही है, वॉइस क्लोनिंग। कई लोगों ने कहा भी कि हमारी वॉइस का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये नैतिक रूप से सही है?
0: मैं कहूंगी कि नैतिक रूप से सही इसलिए नहीं है कि कल चलकर माना कि रेडियो स्टेशंस के लिए अगर क्लोन बना दिए गए और इस्तेमाल भी कर लिए गए, आपने अपनी मैन पावर को कम कर लिया, आपके बहुत सारे मुद्दे सुलझ गए, जहां आप मान लीजिए कि अगर आप किसी रेडियो स्टेशन में 12 घंटे अपने देते हैं तो आपको 6 घंटे देने पड़ेंगे, उसके बाद आपका क्लोन चल जाएगा, यानी कि क्लोनिंग वॉइस चल जाएगी। लेकिन ये मानिए कि ये जो दुनिया है ना, ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निर्भर है, खासतौर पर अगर रेडियो की बात की जाए।
1: जी,
0: तो जो हमें यहाँ सुनाई देता है, दिखाई देता है, वो कल चलकर लोग अपनाते हैं, और जब किसी चीज को अपनाया जाता है तो उसके सकारात्मक पहलू भी अपनाए जाते हैं और नकारात्मक भी। तो कहीं ना कहीं अगर वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल होने लगा तो कल चलकर बहुत ज्वलंत मुद्दे शुरू होने की आशंका है, क्योंकि कहते हैं कि संसाधन हमारे लिए, मनुष्य के लिए, पर मनुष्य पर निर्भर करता है कि उन संसाधनों को वो कैसे उपयोग में लेकर आएगा। इसका उपयोग गलत तरीके से होने लगा तो हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, वो शायद कहीं ना कहीं बाधित हो सकती है। कोई भी मेरी आवाज का इस्तेमाल कर मैं बनकर कुछ भी गलत कर सकता है, तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए
1: और इस पर हमें ध्यान देने की भी जरूरत है। मैम, हम सामुदायिक रेडियो हैं, हम समुदाय के लिए ही काम करते हैं, तो आपने सुना होगा कि सोशल स्टोरी टेलिंग, मतलब समाज से जुड़े हुए मुद्दों की कहानियां जब बड़े मंच पर पहुंचती हैं तो वो लोगों पर काफी गहरा प्रभाव डालती हैं। साथ में जब हम कम्युनिटी के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, तो क्या AI टूल्स आने से सोशल स्टोरी टेलिंग ज्यादा बढ़े हैं, मतलब लोग सोशल स्टोरी टेलिंग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, या पहले की तुलना में कम हुए हैं?
0: देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि अगर खास तौर पर पत्रकारिता की बात की जाए ना, तो पूरी पत्रकारिता में बहुत बड़ा बदलाव आया है।
1: जी,
0: पहले एक जमाना हुआ करता था जब व्यक्ति, जब पत्रकार सिर्फ पेंसिल से लिखा करता था, फिर उसके बाद कंप्यूटर आया, डिजिटाइजेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, चीजें बदली हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी जो सशक्त पत्रकार हैं, सशक्त लोग हैं, जो आम जन की आवाज आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं ना, वो आज भी शब्दों की गरिमा को या ये कह लीजिए विषय की गरिमा को बनाए बैठे हैं। आपके कुछ शब्दों से विषय बदल सकता है, उसका मुद्दा बदल सकता है। आप कितने सजग हैं और आप कितने ज्यादा अपनी जो समुदाय है उसके प्रति आप संवेदनशील हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि AI टूल्स का इस्तेमाल कर या AI का इस्तेमाल कर आप अपनी जो स्क्रिप्ट बना रहे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, उसमें क्या फेरबदल हो गया। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर संवेदनशीलता की बात आती है तो सर्वप्रथम अपने दिल की सुनिए, क्योंकि आपका दिल जो है ना वो सबसे पहले आपको सही मार्गदर्शन करता है कि किस रास्ते पर आप जा रहे हैं।
1: जी,
0: तो पूर्ण रूप से संवेदनशील विषयों पर AI पर निर्भर रहना, तो मैं यही कहूंगी क्रॉस चेक।
1: बिल्कुल, क्रॉस चेक बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है। सिर्फ हमें AI टूल्स की मदद लेनी है, बार बार यही कहूंगी, निर्भर नहीं होना है।
1: जी बिल्कुल सही कहा, हमें AI टूल्स की मदद लेनी है, उन पर निर्भर नहीं होना। तो मैम अभी तक तो हम रेडियो कहते आए थे, लेकिन आजकल हम सुनते हैं स्मार्ट रेडियो। रेडियो भी स्मार्ट होता जा रहा है, रेडियो पहले से काफी आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे में जो रेडियो है उसके भविष्य को AI किस तरफ ले जा रहा है, ये ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहा है या इनोवेशन की तरफ लेकर जा रहा है?
0: देखिए मैं ये कहूंगी कि सर्वप्रथम तो ऑटोमेशन।
1: जी,
0: सर्वप्रथम ऑटोमेशन इसलिए है कि एक कार्यक्रम को बनाने के लिए ना जाने कितने दिन लगते थे पहले।
1: बिल्कुल,
0: बहुत दिन लगते थे, रिसर्च की जाती थी, स्क्रिप्ट तैयार की जाती थी, फिर स्क्रिप्ट में भी किस तरह की स्क्रिप्ट है ये डिसाइड किया जाता था। अगर पैनलिस्ट हैं आपके कार्यक्रम में तो आपको पैनलिस्ट को बुलाना होता था, प्रोग्रामिंग करने में बहुत सारे दिन लगा करते थे। लेकिन अब क्या है, अब दुनिया भर में काम हो जाया करेंगे। इनोवेशन तो तब होगा जब हम एक नया फॉर्मेट लेकर आएंगे, कि रेडियो के माध्यम से हमने कहा कि हम टॉक शो कर रहे हैं, हम कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम कोई फॉर्मेट लेकर आते हैं तो इनोवेशन होगा। लेकिन अगर हम उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं तो मैं कहूंगी सिर्फ ऑटोमेशन है।
1: बिल्कुल, आपने बहुत सही जवाब दिया। मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि AI सिर्फ एक सहायक टूल है, लेकिन उस पर पूरी तरीके से निर्भर होना ठीक नहीं है। मैम मेरा आपसे एक और सवाल है कि जिस तरीके से AI ने हमारे रेडियो के प्रोग्रामिंग को काफी आसान बनाया है, लेकिन श्रोताओं का जो एनालिसिस है वो किस तरीके से बदलेगा? हम AI से कार्यक्रम तो बना लेंगे, प्रोग्राम तो बना लेंगे, लेकिन श्रोताओं का हमारे लिए इंटरेस्ट लगातार किस तरीके से बदलेगा, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें।
0: देखिए, श्रोताओं का इंटरेस्ट तभी बदलता है जब आप उनसे उनकी जैसी बात नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए बहुत आत्मिक हो रहे हैं, एक दूसरे से अपने दिल की बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे के साथ जो है ना स्माइल्स एक्सचेंज कर रहे हैं,
1: जुड़ गए हैं हम,
0: जुड़ गए हैं। रेडियो के माध्यम से भले ही आप अपने श्रोता को नहीं देख सकते, श्रोता आपको नहीं देख सकते, लेकिन आपकी जो आवाज की जो गरिमा है, जिसका जादू है ना, सुनने वाले को अपने रेडियो सेट्स पर यही सुनाई देता है जैसे साक्षात वो व्यक्ति ना मेरे पास मेरे घर में बैठा हुआ है।
1: जी,
0: तो अगर हम AI पर बहुत ज्यादा निर्भर होंगे, देखिए AI की भाषा पर अभी भी हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते। आपने कई बार अगर जो लोग ChatGPT और इन सब का इस्तेमाल करते हैं और बड़े शौक से कहते हैं कि हमने ये स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, आप उनकी स्क्रिप्ट और एक व्यक्ति द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट को जब कंपेयर करेंगे तब आपको महसूस होगा कि आत्मीयता किसमें ज्यादा है। तो मैं यही कहूंगी और हर बार यही कहूंगी कि मानव मूल्यों का कोई तोड़ नहीं, और AI आपको सामग्री दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके जैसे इमोशंस नहीं डेवलप कर सकता, आपके जैसे बात नहीं कर सकता।
1: जी बिल्कुल, वो हमारे जैसे ना तो इमोशन डेवलप कर सकता है, ना श्रोताओं से इतना जुड़ाव महसूस कर सकता है। मैम हम छोटे स्टेशन हैं, हम समुदाय से जुड़े हुए हैं, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है उन्हें AI को किस तरीके से देखना चाहिए, एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए या एक अवसर के रूप में देखना चाहिए?
0: जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी चाहे सामुदायिक रेडियो स्टेशन हो, प्राइवेट FM स्टेशन हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किन के लिए काम कर रहे हैं, हमारी आवाज किन के लिए है, उन लोगों तक पहुंचने के लिए है जो हमें सुनना चाहते हैं, जिनकी जिंदगियों में हमारी वजह से बदलाव आता है, जो बदलाव को महसूस करते हैं। अगर खास तौर पर कम्युनिटी रेडियोज की बात की जाए तो अगर आपको वो उपकरण दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी प्रोग्रामिंग को सशक्त कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। मैं तो यही कहूंगी कि टूल्स का इस्तेमाल चाहे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हो या कोई भी एफएम स्टेशन क्यों ना हो, जरूर करें, क्योंकि अगर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम किया जा सकता है, जरूर करें। लेकिन हाँ, अगर हम संचालकों की बात करें जो आवाज की दुनिया के जादूगर हैं, उन्हें अपना जलवा आवाज का अपनी ही आवाज में, यानी कि अपनी दिल की आवाज के जरिए ही करना है, ना कि AI की दिल की आवाज के जरिए।
1: हाँ, यानी अपनी आवाज का जलवा बरकरार रखना है। मैम, आपसे मेरा अब आखिरी सवाल है, और आपने हमें बड़ा कीमती समय दिया है अपना, लेकिन ये सवाल मेरे श्रोताओं के लिए बेहद जरूरी है। हम सामुदायिक रेडियो हैं, तो हम समुदाय की बात ही करेंगे, क्योंकि हमारा समुदाय ही हमारी ताकत है। मैम, समुदाय के बीच में जाकर एक बात मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि लोकल भाषाओं को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि समुदाय अपनी भाषाओं से बहुत तेजी से जुड़ता है। तो क्या AI लोकल भाषाओं में प्रोग्राम बनाकर कंटेंट को और जीवंत बना सकता है, और या उसे और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकता है?
0: मैं तो यही कहूँगी, जब मेरी माँ बचपन से मेरे साथ मेरी क्षेत्रीय भाषा में बात करती आई और मैंने उस भाषा में अपनी माँ को ढूंढ लिया, तो बताइए क्या AI मेरी माँ बन सकती है? उसी भाषा में क्या AI मुझसे बात कर सकती है जो मार फटकार प्यार दुलार मेरे परिवार से मुझे मिला मेरी भाषाओं या मेरी भाषा के माध्यम से, जिस भी क्षेत्र को मैं संबंध रखती हूँ, जिस भी क्षेत्र से? तो जो चीज़ मुझे बिन मांगे मिल गई, वो मांग कर यानी कि AI के माध्यम से कैसे मिल सकती है? मेरा पूरा जीवन अपने क्षेत्रीय परिसर में गुजरा है।
1: बिल्कुल।
0: तो जो मेरे क्षेत्रीय लोगों ने मुझे दिया, जो भाषा मुझे प्राप्त हुई वहां से, AI जिसका जन्म अब हुआ, वो कैसे मुझे वो दे सकता है जो मेरे साथ बचपन से मेरे साथ था ही नहीं? तो जो मेरे साथ बचपन से था ही नहीं, वो मुझे समझ ही नहीं सकता, जो मुझे समझ ही नहीं सकता, वो मुझे वो क्या कैसे दे सकता है जिस बात की मैं कल्पना कर रही हूँ? तो मैं यही कहूँगी कि क्षेत्रता की अगर आप बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति जिसका उस क्षेत्र से संबंध है, वही उन मूल्यों को आम जनमानस तक पहुंचा सकता है जिस क्षेत्र से वो संबंध रखता है। AI फिर कहूंगी कि ये सहायता का उपकरण है।
1: बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे बीच में एक सेतु का काम कर रहा है।
0: जी,
1: AI हमारी मदद कर रहा है सूचनाओं को देने में, हमें अपडेट करने में, हमारे टूल्स को आसान बनाने में, तकनीक को आसान बनाने में। फिर भी जो हमारी संवेदनाएं हैं, उस पर हमें उसी तरीके से काम करना होगा जिस तरीके से हम करते आए हैं। हमें समुदाय के बीच में जाना होगा, लोगों को सुनना होगा, समझना होगा, और लोगों की हर बात को अपने स्तर से पहुंचाना होगा। हाँ, तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे मेरे साथ गीतिका उनियाल जी को, जो कि FM रेनबो पर बहुत फेमस प्रेजेंटेटर हैं। उनकी आवाज़ बेहद खूबसूरत है और लोग उनकी आवाज़ से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, जैसे कि हम और आप भी जुड़ गए। आज स्टूडियो में उन्होंने हमें अपना बहुत कीमती समय दिया और हमसे AI तकनीक और सामुदायिक रेडियो के भविष्य पर काफ़ी बातें शेयर करी। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। मैम, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, एक और विषय के साथ हम आपसे जुड़ेंगे, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं फिर कहना चाहूंगी कि AI हमारे टूल्स की जानकारी के लिए प्रोडक्शन में मदद करेगा, लेकिन मानवीय संवेदनाओं की जगह, ओरिजिनलिटी की जगह, जिज्ञासा की जगह, समुदाय की आवाज की जगह AI नहीं ले पाएगा।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, RJ बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित,
2: टीबी रोगी के साथ रहते हों,
1: मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जंगल है, आधी रात है।
1: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा स्थिति है जो बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश होने के बाद हानिकारक टॉक्सिन्स के निकालने से होता है। ये अक्सर नव युवतियों में महामारी के दौरान टैम्पोन के प्रयोग के कारण भी होता है, हालांकि ये किसी भी उम्र में हो सकता है।
1: ये कुछ विशेष प्रकार के टैम्पोन के प्रयोग से बैक्टीरिया के वृद्धि के कारण टॉक्सिन्स के निकलने से होता है।
0: इसके लक्षणों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, मांसपेशियों का दर्द, कमजोरी और चक्कर आना और चकत्ते पड़ना है। ये लक्षण एक साथ आते हैं और समय के साथ बिगड़ते जाते हैं।
1: टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि इससे बचाव कैसे किया जाए और इसके क्या लक्षण हैं। सही इलाज से ये ठीक हो जाता है।
0: ये लक्षण दिखने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या ANM से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: से मोहब्बत कमाल की होती है, जिनका मिलना मुकद्दर में ही नहीं होता।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8।
2: सुनो शारदा।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे। देख लो, 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है, तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है। इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी। जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी लाइलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
1: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अरे सुनीता, कैसी है मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी, बस ठीक है।
1: साफ सफाई का ध्यान रख रही हो?
2: जी दीदी, जैसा आपने बोला था, हर रविवार साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा देखते हैं तुरंत साफ करते हैं, जैसे पानी का ड्रम, कूलर, फ्रिज की ट्रे, सब की साफ सफाई करते हैं।
3: और आसपास कहीं भी टायर, नारियल, खाली बर्तन या किसी भी चीज में पानी जमा होने नहीं देते। दीदी
1: बहुत बढ़िया,

0: लो हर रविवार सफाई की जिम्मेदारी, मिलकर पड़ेंगे मच्छरों पर भारी।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की मैं आज हम बात करने जा रहे हैं। हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाए। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

0: जन्म के समय लगे कमजोर, 14 दिन बाद भी वृद्धि हो कम, छूने पर लगता हो ठंडा या फिर लगता हो गरम, जन्म के पहले दिन या 14 दिन बाद भी आंख और शरीर हो पीला या शरीर दिखता हो नीला, सांस लेने में हो परेशानी, अगर दूध पीने में हो कठिनाई, सांस चलती हो तेज या धंसी लगती हो छाती, त्वचा पर हो छोटी फुंसियां 10 या फिर दिखे बड़ा फोड़ा, नवजात लगे सुस्त या बेहोश या पड़ता हो उसको दौरा, फूला हुआ लगे पेट, हो दस्त या हो रहा हो किसी अंग से रक्त स्त्राव, कटा फटा हो होंठ, चिपका हो तालू, सर में पड़ी हो गांठ, समझ लो बच्चे की है हालत खराब। इन लक्षणों का तुम लेना सारा ज्ञान, अच्छे से सब कर लो इनका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना और अपने बच्चे को तुरंत SNCU ले जाना। आपका ख्याल ही आपके परिवार को स्वस्थ रखता है, इसीलिए ना करना इन लक्षणों को नजरअंदाज, क्योंकि फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र।

करें। लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें। यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: शादी में पूरे गांव को दावत देंगे। एक एरोप्लेन में कायलपट्टन के लोग होंगे, दूसरे में नरसापुर। बाबू हाँ बोल दे तेलुगु में।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, विच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको, हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: खड़ा जहा लगया लगता किसका
1: गैरी वो अपना दोस्त है यार सच्ची चलो मिलन चलिए
0: चल चलिए खड़ा शुरू होने वाला भाई
1: गैरी
0: भाई आ गए
1: गैरी संधु
0: भी आ गया
1: टिकट चेक करके भेज दे
0: चुप करो बस हम देखो यार

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Ranvijay. You're listening to Suno Sharda at 90.8 FM.

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: आइए जानते हैं माहवारी अनियमितताओं के बारे में। अगर आप गर्भवती नहीं हैं और आपकी माहवारी 3 या उससे अधिक महीने तक नहीं आती है,
2: अचानक से आपका मासिक धर्म अनियमित हो गया है,
1: आपकी माहवारी 7 दिनों से अधिक समय तक चलती है,
2: आपको हर घंटे या 2 घंटे पर पैड या टैम्पॉन बदलने की जरूरत पड़ती है,
1: माहवारी के दौरान आप बहुत अधिक दर्द का सामना करती हैं,
2: आपका मासिक चक्र न्यूनतम 21 दिन और अधिकतम 35 दिनों से अलग है,
1: आप माहवारी के दौरान स्पॉटिंग का अनुभव करती हैं,
2: आप माहवारी के दौरान अन्य लक्षणों जैसे सामान्य रक्त स्त्राव या बुखार का अनुभव करती हैं,
1: तो आपको उपचार के लिए फौरन नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करना चाहिए।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: ओले ओले ओले। ओ शोनक। हेलो, कौन?
3: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
4: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
3: जल्द मिलते हैं।
2: हेलो हेलो हेलो,
5: दस्त दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
6: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हमारे यहाँ कचरा तो काम वाली बाई या मम्मी उठाती है, ये आपका कचरा क्यों उठा रहे हैं?
1: टीचर ने बताया था ना,
2: सभी काम सब लोग कर सकते हैं, पुरुष या महिला।
1: सफाई करना तो हम सभी का काम है। अपा, एक मिनट, मैं भी कचरा उठाने में आपकी मदद करूँगी।
3: ठीक है, चलो तो हो जाए कचरा पार्टी।
4: कचरा पार्टी।
5: बर्थडे पार्टी और घर से जो भी कचरा निकला है उसका सही उपयोग और प्रबंधन करना जरूरी है, तो हो जाए कचरा पार्टी।
2: कचरे का सही उपयोग और प्रबंधन मतलब
5: घर पे, स्कूल में या बाहर सड़क पर कचरा यूं ही नहीं फेंकना। ये कचरा हमारे वातावरण, जमीन, हवा, पानी को प्रदूषित करता है।
6: सड़क पर यहाँ वहाँ कचरा फैलाओ तो कितनी बुरी बदबू आती है।
0: और कचरे के आसपास चूहे, छुछुंदर, मक्खी मच्छर का घर बन जाता है और कीड़े भी लग जाते हैं
1: जो हमें

0: शाम कूड़ेदान में डालो।
1: रुको तारा, पहले ये देख लो ये कचरा किस तरह का है।
0: कचरा भी अलग अलग तरह का होता है अब्बा।
1: हाँ तारा, ये देखो कि ये सूखा कचरा है या गीला कचरा।
2: जो आसानी से सड़ जाए वो है गीला कचरा, और जो ना सड़े या कई सालों बाद सड़े वो है सूखा कचरा।
0: ये सड़ सकता है, इसका मतलब ये गीला कचरा है।
1: बहुत अच्छे तारा, हमेशा सोचो कि कचरा दोबारा किस काम आ सकता है।
3: इस गीले कचरे को गमले में डाल के मिट्टी से ढक दे तो कुछ समय के बाद ये गीला कचरा जैविक खाद बन जाता है।
4: तो अंकल, क्या हम बचा हुआ हलवा भी गमले में डाल सकते हैं? ये भी तो गीला कचरा है।
1: नहीं चौधरी, पका हुआ खाना गमले में नहीं डालना, उसे तुम जानवरों को खिला सकते हो।
0: कचरा भी आएगा दोबारा काम, तो ये गया गीले कचरे में।
5: और मेरे पास है सूखा कचरा।
1: वाह वाह वाह वाह, तुम सब समझ गए। तो इस तरह गड़बड़ी सूखे और गीले कचरे को अलग कर लिया, और अब ऐसे कचरे की बात करते हैं जो हजारों साल तक सड़ते नहीं, और कुछ कचरे तो खतरनाक भी होते हैं।
0: हजारों साल तक सड़ते नहीं
4: और खतरनाक भी होते हैं,
1: जैसे प्लास्टिक जो हजारों सालों तक ऐसे ही रहेगा, या फिर टूटा शीशा, ब्लेड वगैरह। अगर इन्हें इस कचरे में मिला दिया और कहीं जानवरों ने खा लिया तो इसलिए कोशिश करो कि ऐसी खतरनाक चीजों को अलग से अखबार में लपेट कर बाजार जाते हुए कपड़े का थैला साथ ले लो, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना पड़े। और अगर करना ही पड़ जाए तो उसे बार बार इसी तरह से इस्तेमाल करो, ना कि कूड़े में फेंक दो।
4: वाह, बार बार इस्तेमाल।
5: जैसे इस गिफ्ट रैपिंग पेपर को हम अपनी नोटबुक या किताबों में कवर की तरह चढ़ा सकते हैं।
1: अरे ये क्या खुसर खुसर चल रही है।
0: अब आप देखिए अब्बा, हमारी कचरा कला। कचरा पार्टी की कचरा कला।
4: हमने कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके अपने वातावरण को बचाया।
2: अरे वाह, इसे तो मैं अपने टेबल पर सजाऊंगा।
6: तो तुम सब कब कर रहे हो कचरा पार्टी?

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.
8: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
9: The world is here.